0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुंदर सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे सुमेरा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार आदाब। फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज्यादा आसान बनाना है। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा और सप्ताह में एक बार ये कार्यरत होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती से हफ्ते में 4-5 बार मुआयना यानी कंसल्टेशन भी किया जाएगा। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट परियोजना विकसित हो रही है। मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एक सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवाएं देंगे और तकनीकी सहायता भी देने वाले हैं, ताकि इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके। जैसे कि बजट 2026-2027 में घोषित किया गया था। सिटी ट्रियोले में खुफिया कार्रवाई के दौरान एक पुलिस को ड्रग तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, उसके साथी को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में कोकीन के 350 ग्राम पाए गए। कुल कीमत 5 मिलियन रुपए से ज़्यादा की बताई जा रही है। विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग घायल हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जलमार्ग अबनाए हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दोपहर बाद उत्तर में कुछ बादल घेराएंगे और रह रहकर हल्की बरसात होगी। दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात के दौरान मौसम साजगार रहेगा। हवा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण की तरफ से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। दक्षिण में 2 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय 6:43 पर, सूर्यास्त 5:49 पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब, शुभ दिन आप सभी को।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Set your day in
3: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: Global Healing Foundation vous invite pour son prochain événement Hanuman Katha, The Ultimate Devotion. Une session de Kundalini Awakening and Healing à Rivière des Anguilles, à côté du collège Rivière des Anguilles SS.

0: चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्टूडियो की घड़ी में 6:04 हो चुके हैं। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। गुरुवार का दिन है आज और आज है 23 जुलाई 2024। आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करती है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत MBC रेडियो के साथ। तो चलिए, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शुभ विचारों के साथ। दिव्य दृष्टि कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की तरफ से, और ये कार्यक्रम जो है आप सुन सकेंगे आचार्य सकलानी जी की प्रस्तुति में।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में सुनिए कार्यक्रम दिव्य दृष्टि, ज्ञान भक्ति एवं श्रद्धा का प्रतीक दिव्य दृष्टि।
2: ओम योंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले प्रसंगों से हम सत्संग पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुं शीतं भयं तमोप्येति साधून संसेवतस्तथा। हे उद्धव जी, जिस प्रकार भगवान अग्निदेव का आश्रय लेने पर शीत, भय और अंधकार, इन तीनों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से संत पुरुषों के सेवन से पाप रूपी शीत, जन्म रूपी भय, ताप और अज्ञान रूपी अंधकार, ये सब नहीं रहते हैं, इन सब का नाश हो जाता है। है ना, कहा कि जल में डूबते हुए लोगों के लिए नौका के समान इस भयानक संसार सागर में गोते खाने वालों के लिए ब्रह्मवेत्ता शांत चित्त संत पुरुष ही परम और अवलंबन हैं। जैसे श्रोताओं कि अन्न ही प्राणियों का जीवन है, अन्नम ही प्राणिनाम प्राण, आर्तानाम शरणम त्वहम, धर्मो वित्तम नृणाम प्रेत्य, संतो वा संतोर्वाग विभतोरणम। कि जैसे अन्न ही प्राणियों का जीवन है, मैं ही आर्त पुरुषों का आश्रय हूँ, तथा धर्म ही परलोक में जीव का धन होता है, वैसे ही संसार भय से व्याकुल पुरुष के लिए और संत जन का संग ही परम आश्रय है। भगवान कपिल कह रहे हैं कि प्रसंग मजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारमापावृतम्। कह रहे हैं भगवान कपिल मुनि कि तत्वज्ञ पुरुष ही इस बात को भली भांति जानते हैं कि संग आत्मा के लिए कभी जीर्ण न होने वाला प्रबल बंधन है, परंतु वही संग यदि साधु पुरुषों का हो तो वो मोक्ष का और दरवाजा खोल देने वाला होता है।

0: उत्तम संग भी श्रोताओं उसके भी दो रूप हैं। एक वो जो अंतःकरण की शुद्धि में कारण बनकर के मोक्ष की प्राप्ति में साधन रूप होता है, और दूसरा वो जिसके क्षण काल की भी मोक्ष के साथ तुलना करना असंगत माना जाए, जिनमें पहले की अपेक्षा दूसरे की विशेष महिमा है। श्रीमद् भागवत में और सूत जी कहते हैं कि तुलयामलवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः, कि भगवान भगवत संगी प्रेमियों के निमेश मात्र के संग की तुलना स्वर्गादि की तो बात ही क्या, पुनर्जन्म का नाश करने वाले मोक्ष के साथ भी नहीं की जा सकती श्रोताओं, फिर मर्त्यलोक के राज्य आदि की तो बात ही और कौन करे। ऐसे मोक्ष सन्यासी भगवत प्रेमी महापुरुष भगवान की अपार कृपा से ही मिलते हैं श्रोताओं, परंतु इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि इस युग में ऐसे महापुरुष का अभाव हो गया है। अवश्य ही सच्चे हीरे जैसे जहाँ तहाँ नहीं मिलते हैं, वैसे ही ऐसे महापुरुष भी सहज में नहीं मिलते हैं। संतों और भगवत प्रेमियों की जमात नहीं होती है श्रोताओं, फिर भी श्रद्धा और उत्कंठा का बल होने पर भगवान की कृपा से ऐसे महात्माओं के दर्शन हो भी सकते हैं। ऐसे महात्माओं का दर्शन स्पर्श श्रवण एक साथ निवास और स्मरण भी तो अमोघ होता है। न पहचानने पर भी केवल दर्शन के फलस्वरूप ही मनुष्य के सारे पाप तापों का और अज्ञान का नाश हो करके उसका कल्याण हो जाता है, परंतु दर्शन के अमोघ फल की बात सत्य होने पर भी साधकों के लिए महात्माओं को पहचान करके उनकी सेवा करना और उनके आज्ञानुसार चलना ही उचित है श्रोताओं। ऐसा करने पर मोक्ष सन्यासी या बहुत ऊंची तत्वज्ञान की स्थिति पर पहुँचे हुए महात्मा की जगह उच्च कोटि के साधक महात्मा की सेवा करने से भी लाभ हो सकता है। सेवा का अर्थ उनके समीप रहना और उनके शरीर की सेवा करना ही नहीं है, समीप रहने से भी तो लाभ है श्रोताओं, है ना। कुछ न भी करके उनके पास रहने का लाभ तो होता ही है। महाभारत कहता है ना, निरारंभा यपि वयम पुण्यशीले सुसाधुसु पुण्यमेवाप्नुयामेह पापम पापोपसेवनात्। परंतु इससे भी अधिक महात्मा की सेवा उनकी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्माण करना है श्रोताओं। जो मनुष्य महात्मा के पास तो रहता है परंतु उसकी रुचि के अनुसार अपना जीवन निर्माण करने में अरुचि रखता है, वो उस महात्मा की यथार्थ सेवा नहीं करता है। महात्मा की अनुमति हो तो उसके पास रह करके उनकी रुचि के अनुसार चलने का अभ्यास करने से बहुत लाभ होता है। जन्म जन्मांतर के संग्रहित कुसंस्कारों के कारण शीघ्र ही प्रत्यक्ष लाभ न दिखे तो ये नहीं मानना चाहिए कि लाभ नहीं होता है। अरे पहले मन के कुसंस्कार दबते हैं, सर्वथा नाश नहीं होते हैं, इससे बीच बीच में उनके प्रकट होने पर लाभ न होना दिखता है, परंतु श्रोताओं यदि उनका दबना जारी रहता है तो वे जल्दी ही पिस करके मर जाते हैं, फिर उनका लेस नहीं रहता है। परंतु जब तक ऐसा न हो श्रोताओं, तब तक धैर्य पूर्वक सत्संग का यथार्थ सेवन करते रहना चाहिए। महात्मा पुरुषों के सेवन से निश्चय ही पापों का नाश होकर के संसार सागर से उद्धार हो जाएगा, इस बात पर मन में दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। ये याद रखना चाहिए श्रोताओं कि महात्मा पुरुष दुर्भावों और दुर्गुणों से सर्वथा रहित होते हैं। प्रारब्धवश शरीर और अंतःकरण की स्थिति जहाँ तक रहती है, वहाँ तक शरीर और अंतःकरण की स्थिति किस आधार पर है, इस बात को बतलाने के हेतु से केवल अज्ञानियों के समझाने भर के लिए उनमें लेश विद्या की कल्पना की जाती है, परंतु श्रोताओं उनके अविद्या का लेश नहीं रहता है उनमें। जब अविद्या नहीं तब उसके कार्य दुर्भाव और दुर्गुणों का तो उनके अंतःकरण में रहना सर्वथा असंभव ही है। ये दुर्भाव और दुर्गुण अंतःकरण के विकार हैं श्रोताओ, दोष हैं, धर्म हैं। इनका नाश तो साधक की उच्च स्थिति पर पहुंचने से पहले ही अधिकांश में हो जाती है। तभी अंतःकरण की शुद्धि होती है और अंतःकरण में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। इसलिए महात्मा पुरुषों में दोष की कल्पना करना ही बहुत बड़ी भारी भूल है। ऐसे ही महात्मा पुरुषों को खोज करके उनकी शरण हो जाना चाहिए। सच्ची लगन होगी तो थोड़ी ही खोज में और भगवत कृपा से महान संतों की प्राप्ति की जा सकती है और उनके सत्संग द्वारा हमारा इस भवसागर से उद्धार हो सकता है। बल्कि उद्धार ही नहीं, बल्कि हमें दुर्लभ भगवत प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है। महासंत देवर्षि नारद के इन शब्दों को याद रखिए श्रोताओ। नारद भक्ति सूत्र कहता है कि तदेव साध्यताम, तदेव साध्यताम, है ना। इसलिए उस महा सत्संग की हमेशा साधना करो, उसी की साधना करो श्रोताओ। निरंतर यदि सत्संग किया जाए तो निश्चित रूप से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। यदि हम अपने पुराने इतिहास को भी देखें तो हमारे पूर्वज जो इस देश में आए थे, कितने दुख और कष्ट उनके जीवन में थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में और सत्संग को नहीं छोड़ा। हमेशा सत्संग करते रहे, भले ही कितने कष्ट और उनके जीवन में थे, कितने दुख थे, लेकिन उन्होंने सारे कष्ट और दुख सह करके वो लोग सत्संग करते रहे। लेकिन आज जब हमारे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, सत्संग को छोड़ दिया। और जब से हमारे जीवन में सत्संग छूटा तभी से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो गई हैं श्रोताओ। आज हमारा जो नौजवान है, आज हमारा जो समाज है, वो कितना भटक गया है, कितना भटक रहा है। उसका मूल कारण ही सत्संग का अभाव है। हम लोग सत्संग नहीं कर रहे हैं। पुनः श्रोताओ, हमको पीछे मुड़ करके एक बार देखना होगा कि हम सत्संग की ओर बढ़ें, अपने बैठकाओं को आग फिर से सजाएं, सत्संग करें, अपने जीवन को धन्य करें। यही और हमारी प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी और उपलब्धि हो सकती है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।

चलिए श्रोताओं, 6:18 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और अभी आप सुन रहे थे दिव्य दृष्टि कार्यक्रम और अब हम बनेंगे इस समय से लेकर 6:30 तक आपके लिए चंद भावगीत। और ये पहला भावगीत है, आनंद आश्रम फिल्म से लिया गया। श्रोताओं, सेवा का असली मतलब होता है बिना किसी लालच का दूसरों के नाम करना। तो चलिए इसी सोच के साथ एक बहुत ही बढ़िया सा भावगीत आपके नाम हम कर रहे हैं।

लेकर आगे हमें बढ़ना भी होता है। तो चलिए श्रोताओ, बहुत ही प्यारा सा गीत जो है आपके लिए फिल्म रफ्तार से लिया गया। इसी गीत के साथ ही जो है हम समाचारों की ओर बढ़ेंगे। 6:30 पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार हम वापस मिलेंगे 7:00 सुबह का नजाना कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को शुभ दिवस।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। ठीक 6:30 बजे हैं, आज की सुर्खियां पेश हैं। अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबेन में एक समझौता तय किया। सर शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर आते सितम्बर में एमिरेट्स लाउंज। जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई है। जून 2025 में 97,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई है। फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया। और विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर नए अमेरिकी हमले, 2 लोग जान से गए हैं। नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। इस बुलेटिन में अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबेन में एक समझौता तय किया। वित्तीय सेवाओं के सेक्टर में काबिलियतों की मजबूती और जानकारियों के आदान प्रदान पर आधारित रणनीतिक साझेदारी कायम की गई है। अब्दुल बुलाकी की रिपोर्ट पर टीना बुदना का विवरण।
2: कुमीजा के सदस्य देशों द्वारा स्थापित टीडीबी ग्रुप ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक एक अफ्रीकी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। आज ये वित्तीय संस्था अपनी विशेषज्ञता मॉरिशस के साथ साझा कर रही है। टीडीबी ग्रुप ने फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी FSI के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है। इस समझौते के तहत टीडीबी ग्रुप FSI के साथ मिलकर वित्तीय सेक्टर से जुड़े पेशेवरों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। बैंक के अधिकारियों का कहना है कि मॉरिशस की कई मजबूत विशेषताएं हैं, जिनके बल पर वो अफ्रीका में वित्तीय सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अलावा ये समझौता FSI और TDB ग्रुप के बीच एक दीर्घकालिक पार्टनरशिप का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसका उद्देश्य विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को मजबूत करना और पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में वित्तीय सेवा सेक्टर के विकास में योगदान देना है।
1: मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही हैं और निवेश करती जा रही हैं। इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने कल पोर्टलुई में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सर श्रेयो सागर रामगुलाम हवाई अड्डे पर एक एमिरेट्स लाउंज के खुलने के सिलसिले में बात की। आते

0: सितंबर में उद्घाटन किया जाएगा। क्लोडेजियो फागा देवादू विधि मासिबुरन।
1: पोटली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और एमिरेट्स एयरलाइंस के कई अधिकारियों के बीच मैत्रीपूर्ण मुलाकात हुई। इस दौरान मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव से घिरे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में मॉरिशस और दुबई के बीच विमान सेवाओं पर चर्चा की गई। वेस्ट एशिया इंडियन ओशन एमिरेट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऐसा सुलेमान अहमद बताते हैं,
2: वी केम हियर जस्ट टू मीट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड जस्ट टू थैंक हिम फॉर ऑल द सपोर्ट इवन विद एवरीथिंग दैट वाज गोइंग अराउंड ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल इश्यूज। You know, we were always here at the forefront and we've had great support from the island. And we also made sure that, you know, even when the Honorable Prime Minister had called us and asked us to make sure that we do have flights that will come back to the island carrying Mauritian nationals from all across the world, we were there. We made sure that we are committed. We went immediately from the daily flight that we had. Now we have a double daily flight into Mauritius.
1: सर शिवसागर रामगुलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक नए एमिरेट्स लाउंज के जल्द खुलने पर भी चर्चा हुई। ये लाउंज कंपनी की नई प्रीमियम अवधारणा का हिस्सा होगा।
2: One of the new investments will be a new dedicated lounge at the airport. That's going to be the first of its kind, specifically for Mauritius and even for us, for all the network and all the lounges that we own all across the world. This is going to be the new standard. So we're very excited about it. Hopefully September it should be ready.
1: ये निवेश मॉरिशस में अपनी उपस्थिति को स्थायी रूप से मजबूत करने की एमिरेट्स की इच्छा की पुष्टि करता है। इस एयरलाइन ने 2002 में हमारे यहाँ परिचालन शुरू किया था।
0: जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। जून 2025 में 97,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई। पर्यटन जूनियर मंत्री सिडनी पिया के मुताबिक, अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये हालत उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक पर्यटकों के आगमन में 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई। जूनियर मंत्री सिडनी पिया ने कहा कि दो वजहों से ये परफॉर्मेंस रहा है, पहला फुटबॉल विश्व कप और दूसरा मध्य पूर्व के तनाव। प्रणव बिहारी ने उनसे बात की, विधि मासिबुरन की जबानी उन्हें सुनते हैं।
3: Moi, basé l'expérience qui m'ouena dans un mois de juin pendant une Coupe du Monde, toujours nous galérer, tout le temps, depuis dans l'industrie du tourisme, lit aussi dans une période.
1: अपने अनुभव के अनुसार जून महीने में जो वर्ल्ड कप हुआ है और मध्य पूर्व में जो लड़ाई चल रही है, तो ये मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं कि पर्यटकों की संख्या में कमी आएगी। इंग्लैंड से 25% कम पर्यटक आए हैं, दुबई से प्राप्त आंकड़े 60% से घटा है। जब इंग्लैंड ने ये अलर्ट जारी किया था कि कोई भी ग्राहक दुबई से नहीं गुजर सकता, तो पर्यटकों की संख्या में कमी आई।
3: Il ne l'avait après, mais il était encore là. Vous comprenez maintenant le temps que le client décide pour acheter, lead booking time, il décide pour revoyager. Donc ça prend du temps. Maurice, nous touristes aujourd'hui, il est très mécanique par rapport à l'accès aérien. Et pourtant, nous connaissons qui avions emmené.
0: फ्लैग इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज्यादा आसान बनाना है। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा और सप्ताह में एक बार कार्यरत होगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती से हफ्ते में 4-5 बार मुआयना यानी कंसल्टेशन किया जाएगा। सिथिया मिल त्रियोली में एक खुफिया कार्रवाई के दौरान एक पुलिस को ड्रग तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। कांस्टेबल मोहम्मद अली मामूद विप्सू में काम करता था और उसकी उम्र 33 साल की है। उसके साथ ही 20 साल के शेख अजहर रसूदान को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में कोकेन के 350 ग्राम पाए गए। कुल कीमत 5 मिलियन रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। इसके अलावा मोशन रुपए और विदेशी मुद्राएं भी जब्त की गई। गोजबेल की आजसू ने ये कार्रवाई चलाई है। 30 बिलियन रुपए की लागत पिट्रोली ठेके के सिलसिले में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और मनीष गोबिन को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का फिर से सामना करना पड़ेगा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये एक बड़ा चरण होगा। पूर्व

0: सरकारी नेता को जांचकर्ताओं को ठेका देने की सभी परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अभी तक कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि उनके वकील रऊफ गुलबुल व्यस्त हैं। पूर्व मंत्रियों से भी तहकीकात की जा रही है। कल पुराने वित्त मंत्री रंगानाथन पर्याची से पूछताछ की गई। जून में पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन के अस्थायी इल्जाम के तहत पूर्व मंत्री सुदेश कालीचंद के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कल पुराने आईसीटी मंत्री दीपक बालगोबिंद को सेंट्रल सीआईडी में जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अन्य खबरों में देश का सबसे बड़ा सड़क ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू किए जाएंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर पूर्व और हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों की अवधि में ये परियोजना पूरी होगी। अनाबेल वुल्बिया, करुणा लालू।
1: तकरीबन 30 किलोमीटर के नए रास्ते से देश के उत्तरी प्रांत को पूर्व से जोड़ना इस महत्वाकांक्षी परियोजना की बदौलत दोनों क्षेत्रों के बीच सफर का समय काफी हद तक घट जाएगा। आज इसे तय करने के लिए करीब 2 घंटे लगते हैं। नए रास्ते से आवाजाही सुगम होगी, कुछ स्थलों पर ट्रैफिक जाम कम होगी और उत्तर पूर्व तथा हवाई अड्डे के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस परियोजना के लिए भारतीय सरकार की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी और कार्य शुरू होने के 30 महीने बाद खत्म होंगे। पूर्वी प्रांत का ये पहला मोटरवे होगा। सार्वजनिक मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने कहा, एक ऐसा मार्ग जिसका लाभ पूरा देश को होगा, पर्यटन के लिए भी फायदेमंद होगा, ग्रामीण इलाकों को उत्तर दक्षिण और पश्चिम को जोड़ना ये हमारी योजना है। कार्य इस साल के अंत में शुरू होंगे। इससे पहले परियोजना कई चरणों से गुजरेगी। तकनीकी मूल्यांकन भारत में किया जाएगा जबकि वित्तीय मूल्यांकन मॉरिशस में। एक बृहद परियोजना जिसके लिए मॉरिशन और भारतीय अधिकारियों का समन्वयन कोऑर्डिनेशन चाहिए। भारतीय उच्चायुक्त महामहिम अनुराग श्रीवास्तव ने कहा,
2: गत
1: सितंबर महीने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की भारत यात्रा के समय $680 मिलियन के खास वित्तीय सहायता प्रोग्राम की घोषणा की गई थी। इस प्रोग्राम के 3 चरण हैं। एक हिस्सा दान के रूप में दान और लाइन ऑफ क्रेडिट का मिश्रण तथा प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता। कुल 8 परियोजनाएं साकार की जाएंगी। ये वाला सबसे अहम है जिसकी अनुमानित लागत $10 बिलियन है, यानी कि $220 मिलियन के करीब। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की कि इस परियोजना को साकार करने में पर्यावरण पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम चरण में ओलिविया गांव को हवाई अड्डे से जोड़ने के लिए एक मार्ग बनाया जाएगा। अंत में ये नया सड़क ढांचा देश के कई इलाकों और हवाई अड्डे के बीच बेहतर कनेक्टिविटी कायम करेगा। इससे गाड़ी चालकों को फायदा होगा और पूरे पूर्वी प्रांत में विकास में योगदान होगा।
0: इस शनिवार को हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर पीवी स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। सीबी और डीबीएम सुबह 10 बजे से क्यूपीप के अपने पुराने कार्यालय में एक सत्र का आयोजन कर रहे हैं। इसके दौरान सप्लायरों और फोटोवोल्टाइक प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों के साथ बातचीत की जाएगी। शैली नेबन की रिपोर्ट पर ये विवरण।
3: हालिया राष्ट्रीय बजट में इस योजना का ऐलान किया गया था। घर के लिए फोटोवोल्टाइक प्रणाली और बैटरी खरीदने पर 25% की सब्सिडी, जो हर घर के लिए ₹75,000 तक सीमित होगी। ये कदम रेजिडेंशियल सौर्य ऊर्जा को तेजी से अपनाने के लिए कई पहलों का हिस्सा है। इनमें शामिल हैं ग्रिड में भेजी गई बिजली के बायबैक टैरिफ में 15% की बढ़ोतरी और 1,000 लाभार्थी घरों की छतों पर लगाए गए सोलर किट्स की ओनरशिप। अब ये परिवार अपने सौर्य बिजली का 100% इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि पहले उन्हें सिर्फ 50% इस्तेमाल करने की इजाजत थी। सौर्य पैनल्स, बैटरीज और इन्वर्टर्स पर वैट से छूट दी जा रही है। शनिवार की बैठक से बहुत उम्मीद है, खासतौर पर इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण को लेकर। डीबीएम द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त फाइनेंसिंग की शर्तें, जिन्हें घर के मालिक अपने हिस्से का बचा हुआ खर्चा पूरा कर सके। ये भी ध्यान दें कि पिछले जून में ऊर्जा और जनपयोग मंत्री पैट्रिक कासियावादेन ने कहा था कि बची हुई राशि को डीबीएम

0: या किसी दूसरे बैंक से कर्ज लेकर फाइनेंस किया जा सकता है। हालांकि उस वक्त इस उधार की शर्तों के बारे में कोई तफसील जानकारी नहीं दी गई थी। सबसे पहले क्षेत्र के पेशेवर यानी सीबी और डीबीएम के अफसर एक साथ इंस्टॉलेशन को अंतिम रूप देंगे ताकि इस योजना को आम जनता के लिए लागू करने से पहले सब कुछ ठीक तरह से तैयार हो।
1: विदेश में ईरान

कीमत चुकानी पड़ेगी। एक नागरिक परमाणु प्रोग्राम को विकसित करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संधि मिल की हैसियत रखने वाला समझौता तय किया। इस संधि को एक शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करार दिया गया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को सऊदी के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। पेरू की राजधानी लीमा में एक घर में आग भर की एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हुई है, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे। 2 लोग जख्मी हुए हैं। अभी वहां की स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की ताकि इस आग की वजह मालूम की जा सके। आम हालत, हमारे इलाके में हल्की हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह मौसम अच्छा रहेगा। दोपहर बाद उत्तर में बादल घिराएंगे और रह रहकर कुछ चींटे पड़ेंगी। दूसरे इलाकों में मौसम अच्छा रहेगा। आज रात मौसम साजगार रहेगा। हवा दक्षिण की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। लगूनों के उस पार समुद्र चंचल रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी दक्षिण के लगूनों में। तापमान सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सुबह 6:43 पर सूरज उगा है और शाम को 5:49 पर सूरज ढल जाएगा।

आज की बड़ी खबरें एक बार फिर से पेश हैं। अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबन में तय किया समझौता। सरशेव सागर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आते सितंबर में इमिरेट्स लाउंज का उद्घाटन। जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। जून 2025 में 97,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई है। फ्लाक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया। और विदेश में ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं। तो ये थी अब तक की स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अब तक की बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी कादिया कुदादीन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुभदिन आप सभी को। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुनिए। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड सेंट जूलियन विलाज में 84 साल के 84 years old जनाब अब्दुल फारूक मामदीन, जनाब अब्दुल फारूक मामदीन जो बाई फारूक के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज ढाई बजे इनकी बेगम रोजीदा मामदीन के घर रॉयल रोड सेंट जूलियन विलाज से उठाकर सबसे पहले जनाजे की नमाज के लिए सेंट जूलियन विलाज की मस्जिद और फिर दफनाने के लिए बुबुआ का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2:30 PM। भारत रोड लालमाची में 54 साल के 54 years old श्री उत्तम कुमार हीरा, जो उत्तम के नाम से ही ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज ढाई बजे इनकी पत्नी कौशल्या हीरा के घर भारत रोड लालमाची से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। नंबर 17 इपेंगल रोड मोहोश बुबासे में 66 साल की 66 years old श्रीमती देवी सियोराम पैराशी नाम नागामुतु, जो देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज तीन बजे इनके घर नंबर 17 इपेंगल रोड मोहोश बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमोतै मोगोश की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड वैली दी प्रेत्र में 76 साल की 76 years old श्रीमती गीजावंती नौंदा पैदाइशी नाम दिलजो, जो मांटी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ

थी, आज दो बजे इनके बेटे रमेश नोंदा के घर रोल रोल वालिदी फत्र से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वालिदी फत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। कौन जानेट शुमे ग्रोनिये में 79 साल की 79 years old श्रीमती गोइंदामा रामास्वामी, श्रीमती गोइंदामा रामास्वामी पैदाइशी नाम और आकुची जो नायेगी के नाम से ज्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे सिनिवासन रामास्वामी के घर कौजानेत शुमेघोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिव्यादी काले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। नंबर 31 नंबर 31 मौसलमा VOS ग्रोबी यूनियन ग्रोव में 68 साल के 68 years old श्री रघुनानन गोंदारी, श्री रघुनानन गोंदारी जो राजे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे आज दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी देवपति गोंदारी के घर नंबर 31 मोसिलमा VOS ग्रोबी न्यू ग्रोव से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड पिथिराफ्रे में 76 साल के 76 years old श्री केशवर प्रयाग जो रोहित के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी देविका प्रयाग के घर रॉयल रोड पिथिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोची की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉयल रोड बुबासे में 76 साल की 76 years old मोहतरमा हलीमा अब्दुल हमीद हसन जी, मोहतरमा हलीमान अब्दुल हमीद हसन जी जो लालगोरी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज डेढ़ बजे इनकी बेटी रूबीना वाइस के घर नंबर 101 रॉयल रोड बुबासा से उठाकर दफनाने के लिए रिश्तिया का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। शुमे बुलोंजे सिया कॉन्स्टेंस सेंट पियर में 77 साल की 77 years old श्रीमती प्रियमवदा नारायदू, श्रीमती प्रियमवदा नारायदू पैदाइशी नामा पाडू जो प्रियम के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी इनकी मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज डेढ़ बजे इनके बेटे विराज नायागादू के घर शुमे बुलोंजे सियाकोंस्टेंस सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सियाकोंस्टेंस सेंट पियर की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1:30 PM। टुस्का रोड क्रेवकर में 89 साल के 89 years old श्री रूप नारायण सिंबू जो सदैव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके बेटे संजय सिंबू के घर टुस्का रोड क्रेवकर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। लुई लाजेर रोड उकुले में 92 साल की 92 years old श्रीमती साबित्रा हीरालाल जो चाची साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दो बजे इनके बेटे आनंद हीरालाल के घर लुई लाजेर रोड उकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीगागा की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। EDC बैलेंस रोड प्लेन मान्यों में 45 साल के 45 years old श्री देवराज प्रति जो चिप के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थें आज दस बजे इनके भाई देव प्रति के घर EDC बैलेंस रोड प्लेन मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेन मान्यों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एम्पास नोत्रदाम में बग में 68 साल के 68 years old श्री ज्ञानदेव पिहारी जो बाबा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज 11 बजे इनकी पत्नी लक्ष्मी पिहारी के घर एम्पास नोत्रदाम में बग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुवालों की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड रिविया जुपस्त में 38 साल के 38 years old श्री नितिन चुटकुरी जो नीतीश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दस बजे इनके पिता धर्मानंद चुटकुरी के घर रॉयल रोड रिविया जुपस्त से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौंगाबो रिविया जुपस्त की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 23 नंबर 20

0: 93 बाउंडेरी स्ट्रीट रिजिल में 93 साल की 93 इयर्स ओल्ड श्रीमती लक्ष्मीन पराऊ, श्रीमती लक्ष्मीन पराऊ पैदाइशी नाम अकालू, जो लक्ष्मीन लुलुन के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ है आज साढ़े दस बजे इनके घर नंबर 23 बाउंडेरी स्ट्रीट रिजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोदोगौद की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 10 AM। रॉबिन्सन रोड क्यूपिक में 55 साल के 55 ईयर्स ओल्ड श्री रविंद्रनाथ बक्तोवा जो बेबे के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज साढ़े दस बजे इनके घर रॉबिन्सन रोड क्यूपिक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए भीगावा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 24 फैसल फ्रेड स्ट्रीट ट्रांकबो में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री अमुगम गुइंदेन गुंडुन जो नंदा के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थ ही आज 10 बजे के भाई धर्माराजन गोइंदेन गुंडुन के घर नंबर 24 फैसल फ्रेड स्ट्रीट ट्रांकबो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थोंगबाओ की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रेमेशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स आज से शुरू हो रहे हैं। 74 देशों के टॉप एथलीट्स, जिनमें ओलंपिक और पैरालंपिक्स चैंपियन भी हैं, ग्लासगो में हैं। 11 दिनों का स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज से शुरू। पिछली बार बर्मिंगहम 2022 में ऑस्ट्रेलिया मेडल टेबल में टॉप आया था 67 गोल्ड मेडल के साथ। इंग्लैंड दूसरे पोजिशन पर। मॉरिशस 6 खेलों में हैं, 40 एथलीट्स ग्लासगो में होंगे। पिछले खेलों में हमारे एथलीट 3 सिल्वर मेडल 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत पाए थे। इस बार मेडल चांसेस पैरा एथलेटिक्स, जूडो, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग में है। नोएमी अल्फोंस, विंसले गंगाया, फैब्रिस वालेरी, इन पर काफ़ी उम्मीदें हैं। अली मोरिस इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लाएंगे, देश का नाम रोशन करेंगे हमारे एथलीट्स। ट्रांसफर न्यूज, मोर्गन रॉजर्स एस्टन विला से चेल्सी में गया, बदले में गार्नाचो विला में आ गया है। इधर लिवरपूल ने मोनाको के विंगर मैग्नस अक्लुशे के लिए प्रस्ताव भेजा है, पर पेरिस सेंट जर्मेन भी उसे साइन करना चाहता है। पेरिस सेंट जर्मेन की ओर से कई ऑफर भेजे गए, पर मोनाको के अब तक अपने खिलाड़ी को बेचने से इनकार किया है। इधर लिवरपूल ने वर्ल्ड चैंपियन विक्टर मुनोज को साइन कर लिया है, पर नए बॉस एंटोनी इराओला ने कहा कि एक विंगर की ज़रूरत है जो साला के स्थान पर खेल पाए। टोटनहम हॉटस्पर का प्री सीजन शुरू हो गया है और पहले मैच में ही नए खिलाड़ी से पैसे वसूल होने लगे हैं। मार्चुस फर्नांडेज, जिसे 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर वेस्ट हैम से साइन किया गया था, अपने पहले ही मैच में स्कोर किया एमके डॉन्स के खिलाफ। फर्नांडेज ने इसे अपने कार्य का बेस्ट गोल कहा। गोलकीपर मार्टिन जुब्रावका का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग साइनिंग सांड्रो टोनाली को भी खेलने का मौका दिया गया। टोटनहम हॉटस्पर की टीम आज न्यूजीलैंड जा रही है प्री सीजन फ्रेंडलीज के लिए। यूईएफए चैंपियंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच कल खेले गए। ओमोजिया निकोजिया ने कायरात को 1-0 से हराया। लेव्स की सोफिया 1, यूनिवर्सिटादिया क्रालोवा 0, इग्नासिया और सेलिये के बीच मैच ड्रो 3-3। यूईएफए कॉन्फ्रेंस लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड में डिनामो मिंस्क, बोहेमियंस, रीगा, स्पोर्टिंग ब्रागा की जीत 2 मैच ड्रो गए। आज यूरोपा लीग के सेकंड क्वालिफाइंग राउंड के मैच खेले जाएंगे। आर्सेनल का खिलाड़ी सालीबा बैक इंजरी के कारण काफ़ी मैचों में नहीं खेल पाएगा। वर्ल्ड कप के दौरान उसे चोट लगी थी। क्रिकेट, हरारे जिम्बाब्वे में आज पहला T20 मैच टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार T20 सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम नए कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ पहला T20 मैच जीतना चाहेगी। वैभव सूर्यवंश

चिप पर फिर से स्पॉटलाइट है। यहीं पर उसने इंडिया अंडर 19 टीम को वर्ल्ड कप जितवाया था, पर इस बार सीनियर टीम में है। वापस कॉमनवेल्थ गेम्स पर आते हैं। टीम इंडिया के लिए इस बार काम आसान नहीं होगा, ऐसे कम डिसिप्लिन हैं जहां ये लोग मेडल जीतते थे, जैसे इस बार रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वाश आदि लिस्ट में नहीं है। ऐसे में कम मेडल्स की आशा है, पर जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, हाई जंप में सर्वेश कुशारे, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चन्नू दो बार गोल्ड मेडलिस्ट हैं, बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन जैस्मीन लंबोरिया, ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पावर जैसे एथलीट हैं भारतीय टीम में। सो हम कहेंगे अली मॉरिस कॉमनवेल्थ गेम्स में वी कैन ब्रिंग मोर एंड मोर मेडल्स, लेकिन वहां पर है हमारे एथलीट, यही बहुत बड़ी बात है, उनको हम सपोर्ट करेंगे एक साथ। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: चलिए श्रोताओ, घड़ी मिला लीजिए। समय सुबह के 7:02 हुए हैं। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। आप सभी को नए सुबह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन सुख, शांति, प्रेम और सकारात्मकता से भरपूर हो, बस हमारी यही कामना है। आज है गुरुवार 23 जुलाई 2026। आप सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो चलिए श्रोताओ, शुरुआत अच्छी तरह से हो चुकी है। सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र हम साथ मिलकर काटेंगे। तो चलिए श्रोताओ, शुभ विचारों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं चिंतन डॉक्टर जमैन जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: जहां लज्जा की आवश्यकता नहीं, उस काम में जो लज्जा करते हैं, और लज्जा करने योग्य काम में लज्जा नहीं करते, मिथ्या धारणा वाले ऐसे मनुष्य दूर गति को प्राप्त होते हैं।

चलिए श्रोताओं, हम आपको बताते चलिए हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा। इस समय आप सुन रहे हैं सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, चंद पुराने गाने आपके लिए। 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार चंद द्वैस गाने आपके नाम। 8:50 पर हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में साथ में एक भोजपुरी गीत आपके लिए। 9 बजे फिर से आप समाचार सुन सकेंगे और उसके बाद आज की चर्चा अनुराधा के साथ। 10 बजे के समाचारों के बाद आप सुन सकेंगे भक्ति धारा कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के अंतर्गत चंद भक्ति गीत। 11 बजे आप समाचार सुन सकेंगे और इसके बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा के साथ। 12 बजे तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरीशानी लेकर आएगी। तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी के साथ 12:30 बजे। 1:30 बजे विविधा कार्यक्रम मराठी भाषा प्रीति के साथ। मंडारीन कार्यक्रम जो है आप दोपहर के 2 बजे सुन सकेंगे। 2:30 बजे रंगारंग, ये कार्यक्रम जो है गुजराती भाषा में अमिता के साथ। आपकी पसंद 2:45 पर सुमिता की प्रस्तुति में। फिर शाम के 4 बजे आप भक्ति सागर कार्यक्रम सुन सकेंगे सुमिता के साथ। सदाबहार गीत सुमिता की प्रस्तुति में शाम के 5 बजे। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे। इसके बाद चंद फिल्मी गाने। 6:30 बजे मंडारिन में कार्यक्रम दाविद के

0: सात पुवाना लेकर आएगी। तमिल भाषा में कार्यक्रम रात के 7 बजे। 7:30 बजे आप तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा की प्रस्तुति में सुन सकेंगे। और मराठी भाषा ये कार्यक्रम होने वाला है 7:50 पर शीर्ष के साथ भजरे प्रभु का नाम देवीना की प्रस्तुति में रात्रि के 8:10 पर। 8:40 पर महफिल शब समीर के साथ भोजपुरी तड़का ये कार्यक्रम किरण की प्रस्तुति में रात के 9 बजे। रात के 11 बजे सुनहरे पल चन पुराने गाने गिनिशा की प्रस्तुति में। और रात के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चन प्यारे प्यारे गीत। तो हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियां।
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियां।

श्रोताओं, जीवन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि हर नई सुबह हमें यह विश्वास दिलाती है कि परिवर्तन संभव है। इसलिए अपने मन को आशा से भर

चलिए श्रोताओं, उम्मीद का दीप आप जलाए रखें, क्योंकि मेहनत की राह पर चलने वाले उनके साथ जो है सूर्योदय अपने सफलता की नई किरण लेकर ज़रूर आता है। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम, आपके नाम हम कर रहे हैं, चंद प्यारे प्यारे मीठे मीठे तराने। अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, फिल्म का नाम है नादान। चलिए, मुकेश का गाया हुआ गीत आप सभी सुनने वालों के नाम करेंगे।

श्रोताओं, नई सुबह केवल एक नया दिन नहीं बल्कि नई उम्मीदों और नई शुरुआत का संदेश लेकर आती है। हर उगता हुआ सूरज हमें याद दिलाता है कि बीता हुआ कल चाहे जैसा भी हो, आज हमारे पास फिर से मुस्कुराने, सीखने और आगे बढ़ने का अवसर है। इसलिए कहते हैं जीवन चलने का नाम है।

0: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए, बहुत सारे बच्चे जो है छुट्टियां मना रहे हैं, तो चलिए उन सभी बच्चों के नाम ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म मीली से लिया गया। 7:32 हुए स्टूडियो की घड़ी में।

श्रोताओं, हम सबको पता है फूलों की सबसे बड़ी खूबसूरती उनकी खुशबू होती है और बच्चों की सबसे बड़ी पहचान उनकी मासूमियत। दोनों ही हमें बिना किसी शर्त के मुस्कुराना सिखाते हैं, है ना?

वैसे श्रोताओं, हर फूल का अपना रंग और अपनी पहचान होती है। उसी तरह हर इंसान भी अपने अलग गुणों के साथ इस दुनिया में आया है। हमें दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करना चाहिए। फूलों की तरह खिलिए, प्रेम की तरह महकिए और अपने अच्छे कर्मों से हर दिल में खुशियों की खुशबू बिखरती रहिए। यह है सुबह का नज़राना कार्यक्रम। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो चलिए गीतों का एक खूबसूरत कारवाई से हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, जब हम मंजिल की बात करते हैं तो सच्ची मंजिल बाहरी सफलता नहीं बल्कि मन की शांति, प्रेम, करुणा और ईश्वर से जुड़ाव है। जब मन सकारात्मक विचारों से भर जाता है तब हर रास्ता आसान हो जाता है और हर मंजिल सार्थक हो जाती है। तो चलिए, सुबह का नजराना कार्यक्रम आपके नाम हम सजा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे।

0: सपनों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।
1: अच्छा।
2: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

अगर ये दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला ला ला ला ला बस बस बस बस बस बस बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया. म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए. रेडी 1 2 3 4

चलिए बहुत ही बढ़िया सा नजारा आप सभी सुनने वालों के नाम हम कर रहे हैं इस समय रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए एक अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं और आप पूरा वैसे आप भोजपुरी में समाचार सुन सकेंगे और हम वापस आएंगे समाचारों के उस पार। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: नमस्ते और सलाम फजर के 8 मजलबा आवाजा भोजपुरी समाचार सुनना जा। अफ्रीका के सेवा में एगो इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मोरिस अपन जगह और मजबूत करे चाहेला एक गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट एबन में एगो समझौता तय करेलन जात पाते। वित्तीय सेवा के क्षेत्र में काबिलियत के मजबूत और जानकारी के आदान प्रदान पर आधारित एगो रणनीतिक साझेदारी कायम करल कर रहल बाते। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद इमिरेट्स मोरिस में अपन गतिविधि जारी रखेला और निवेश करे जाबा। आज काल ई विमानन कंपनी के एगो डेलीगेशन पोटवी में प्रधानमंत्री से मुलाकात करलंजा। दोनों पक्ष सर शिव सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एगो इमिरेट्स लाउंज के खुलने के सिलसिले में बात करलंजा। आवत सप्ताह में उद्घाटन करल जाए। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट पर योजना विकसित हुआ था। एगो मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एगो सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवा देत बा और तकनीकी सहायता भी देलन बाते। जमे ई नावा प्रणाली के अमल में लाए बाते जैसन के बजट 2026-2027 में घोषित कर ले बा। अधिकारी सरहद खातिर एगो डिजिटल संचालन प्रणाली के विकसित करल जा बाते। विदेश में एगो नागरिक परमाणु प्रोग्राम के विकसित करे खातिर अमेरिका और सऊदी अरब एगो संगे मिल के हैसियत रखने वाला समझौता तय करलन जात बाते। इस संधि को एगो शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करार देवल जात बाते जकर से अमेरिकी कंपनियों को सऊदी अरब के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में बड़ी हिस्सेदारी मिलेला। तो ई रहर समाचार। नमस्ते और सलाम।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: मरनी के खबर सुन जाला। घ्रेमों सैंपियमी तिनकोरी दुबरीस के स्वासंदेजों श्री स्वागत चतुरी जन मनोज के नाम से जिस्ती जान जात रलन गुजर कल हवन इंकर माती आज चार बजे इंकर घरे ला घ्रेमों सैंपिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर से कुंस्तांस के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। रॉयल रोड सेंट जुलियन विलाज में चारकोरी चार बरिस के 84 जनाब अब्दुल फारूक मामदीन जनाब अब्दुल फारूक मामदीन जन बाई फारूक के नाम से जस्ती जान जात रलन इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज दो बज के आधा इनकर बेगम रोजिदा मामदीन के घरे रॉयल रोड सेंट जुलियन विलाज से उठा के सबसे पहले जनाजे के नमाज खातिर सेंट जुलियन विलाज के मस्जिद और दफनाए खातिर बुबुआ के कब्रिस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। भारत रोड लालमाची में दुकुरी 14 बरिस के सेकंड कातखों श्री उत्तम कुमार हीरा जन उत्तम के नाम से जस्ती जान जात्रलन गुजर कल हवन इनकर माती आज दो बज के आधा इनकर पत्नी कौशल्या हीरा के घरे भारत रोड लालमाटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लालमाटी के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टू डी एट 2 PM। नंबर 17 ए पेंगल रोड मोहोश बुबासा में तीन कोरी छः बरिस

0: Rolls Road, Rivière du Poste से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कोंगाबो रिविया जू पोस्ट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। निजावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 23, नंबर 20 फ्री बाउंडेरी स्ट्रीट ब्राजील में 4 कोरी 13 बरिस के 93 ओं श्रीमती लक्ष्मीन पराऊ पैदाइशी नाम अकालू जन लक्ष्मीन लुलन के नाम से जस्ती जाना जात रलन गुजर गल हवनिंग करमाती आज दस बज के आधा इनकर घरे। नंबर 23, नंबर 23 बाउंडेरी स्ट्रीट रोजेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कोदगोद के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉबिन्सन रोड क्यूपिप में 2 कोरी 15 बरिस के 51 ओं श्री रविन्द्रनाथ भक्तो व जन बेबे के नाम से जस्ती जान जातरलन गुजर गल हवन इनकर माती आज दस बज के आधा कर घरे रॉबिन्सन रोड क्यूबिप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बिगावा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। नंबर 24, नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट ट्रंकबो में 3 कोरी 60 ओं के श्री अमुगम गुइंदेन गुंदुन जन नंदा के नाम से जस्ते जाना जातरलन गुजर गल हवन इनकर माती आज दस बजे कर भाई धर्माराजन गोइंदन गुंदुन के घरे नंबर 24, नंबर 24 प्रिंस अल्फ्रेड स्ट्रीट ट्रंकबो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ट्रंकबो के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, 8:18 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, आपके लाए हैं चंद डुएट्स गाने इस समय से लेकर 8:50 पर। और ये पहले डुएट्स जो है आप पसंद करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत लता मंगेशकर नितिन मुकेश की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है आईना।

तो चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत, फिल्म का नाम है आईना, और ये गीत जो है बहुत ही खूबसूरत है, जो रिश्तों की उलझने, अधूरी चाहत और दिल की बेबसी को खूबसूरती से महसूस कराता है। ये बहुत ही प्यारा सा नज़ाना। तो चलिए गीतों का ये खूबसूरत सफ़र से हम आगे बढ़ाएंगे। अगला डुएट जो है लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में आप सुन पाएंगे, फिल्म का नाम है सातवें आसमान।

श्रोताओं, ये गीत हमें याद दिलाता है कि जब भावनाएं सच्ची हो तो दिल जो है हर बात को बड़ी शिद्दत से जीता है। कभी प्यार मुस्कान बन जाता है तो कभी वही प्यार खामोशी का कारण भी बन जाता है। तो चलिए, जिंदगी का यही आईना हमें सिखाता है कि हर अनुभव हमें और मजबूत बनाता है। एक और प्यारा सा गीत आपके लिए अलका याग्निक और कुमार सानू की मीठी आवाज़ों में। यह है सिलसिला प्यार का। इस फिल्म का ये टाइटल ट्रैक आपके लिए।

चलिए 8:33 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद प्यारे प्यारे गीत आपके नाम हम कर रहे हैं। फिल्म फना से लिया गया ये प्यारा सा डुएट सोनू निगम सुनिधि चौहान की मीठी आवाज़ों में।

श्रोताओं, दिल की आवाज़ को हमेशा सुनिए, क्योंकि सच्ची भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। रोमांटिक गीतों की यही खासियत है, हर बार सुनिए तो एक नया एहसास साथ में ले आती है। तो चलिए अगले डुएट की ओर हम बढ़ेंगे। फिल्म का नाम है अलबिला।

दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो वह है इंसान का दिल। वह स्थान है जहाँ प्यार पलता है।

श्रोताओ कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह अगर कोई है तो वह इंसान का दिल। यही वह स्थान है जहाँ प्यार जन्म लेता है, रिश्ते बसते हैं, उम्मीदें पलती हैं और विश्वास अपनी जड़ें जमाता भी है। दिल जब खुश होता है तो छोटी सी बात भी क्योहार लगती है, और जब उदास होता है तो भीड़ में भी इंसान खुद को अकेला महसूस कर सकता है। इसलिए अपने दिल को प्रेम, दया, क्षमा और सकारात्मक सोच से भर दीजिए।

0: श्रोताओं, दिल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि वह नफरत से नहीं बल्कि अपनापन और स्नेह से धड़कता है। जो दिल दूसरों की खुशी में खुश होता है, बस यही सीख हमें लेना है कि वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद पाता है। तो चलिए, अभी आप चंद डुएट्स गाने जो है सुन रहे थे। इस कार्यक्रम का समय पूरा हो चला, 8:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर, हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने चांद पर बात करब जा। एक दूसरे महीने आगे हमने देख लीजा कि कैसे चांद पर जो पहला कदम पड़ रहल वो गतिविधि कैसे चल रहल, और आज देखब जा कि चांद पर इंसान कैसे पहुँचल। चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पहुँचला के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाला हर 20 जुलाई के। 20 जुलाई 1969 के हो रहल, और ई दिन पर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपन पहला कदम रखले रहलन। ई दिन के मून डे चंद्र दिवस भी कहाला। चांद पर मानव के पहला कदम के जो उपस्थिति पड़ल ओके सम्मानित खातिर ई अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस मनावल जाला, और ई पृथ्वी के समस्त जीव इंसान के ताकत के एगो प्रतीक है। कैसे इंसान सकल अपन मन मस्तिष्क के बल पर चांद पर कदम रखे एगो प्लैनेट से दूसर प्लैनेट तक। 20 जुलाई के दिन नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपन पहला कदम रखले रहलन। ई अंतरिक्ष यात्रा में नील आर्मस्ट्रांग अकेले नहीं रहलन, उकर संगे बज एल्ड्रिन ने रहलन। दुनिया ई ऐतिहासिक कार्य के साक्षी बनल। ई सफलता के जश्न मनावे खातिर हर 20 जुलाई के मून डे मनावल जाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 20 जुलाई के जब नील और बज के अंतरिक्ष यान चांद के तह पर पहुँचल ओकर जमीन पर पहुँचल, तो ई मिशन से जुड़ल सब कोई के सांस एक घड़ी खातिर रुक गल रहल, थम गल रहल और धड़कन तेज हो गल रहल। जब नील और बज चांद पर गैलन सा तो कोई नहीं सोचले रहल कि उ लोग के कामयाबी मिली कि नहीं। कहे कि ऐसा ढेर घटना होल बा जहाँ पर अंतरिक्ष पृथ्वी से निकलल लेकिन वो अपन जो मंजिल बा हुआ नहीं पहुँचल। जब ये दोनों जना चांद के सतह पर पहुँचलन सा तो अलार्म बजल, और यान में ईंधन के मात्रा भी बेहद कमती हो गल रहल। लेकिन नील के हुनर के भी कोनो जवाब नहीं रहल, और वो सहजता से अंतरिक्ष यान के चांद पर उतार देलन। नील चांद पर अमेरिकी झंडा लहरा दिलक, चांद के सतह एकदम उबर खाबड़ रहल। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहला कदम रख के इतिहास रच दिलन। जहाँ उ लोग अमेरिकी झंडा लगेलन सा हुआ ई भी लिखलन सा

चांद के इस जगह पर धरती से आयल इंसान पहला हला कदम रखलक। जुलाई 1969 में हमें पूरा मानवतावाद के शांति खातिर यहाँ पर आल है सा। नील और बस चांद तक ई सफर अंतरिक्ष यान अपोलो में 16 जुलाई के शुरू कर ले रहलन सा। अपन इंटरव्यू में नील बोलन कि ई सफलता के श्रेय वो हजारन जना के जाता जे लोग ई मिशन पर काम कर ले हवन सा। अपोलो के ई मिशन में औरत लोग के अहम भूमिका रहल, लेकिन पुरुष लोग के सम्मान उ लोग के ई मान्यता नहीं देवल गल। लेकिन आज जब ई दिन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनावल जाला तो ई बात के ज़रूर रेखांकित करल जाला कि चांद पर इंसान के जन पहला कदम पड़ल ओकर पीछे औरत के भी हाथ रहल। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

चलिए श्रोताओं, अभी आप हमारी धर कार्यक्रम सुन रहे थे। कुछ ही घड़ी में 9 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। तो चलिए वापस मिलेंगे 10 बजे, भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर हम उपस्थित होंगे। तो चलिए आपके लिए एक भोजपुरी गीत चलाएंगे।

0: आइए सुमैरा से समाचार सुनिए। नमस्कार सुमैरा।
1: नमस्कार। नमस्कार आदाब सभी को। अफ्रीका की सेवा में एक इलाकाई वित्तीय केंद्र की हैसियत से मॉरिशस अपनी जगह और मजबूत करना चाहता है। इस गतिशीलता से ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक ग्रुप और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ने एबेन में एक समझौता तय किया। वित्तीय सेवाओं के सेक्टर में काबिलियतों की मजबूती और जानकारियों के आदान प्रदान पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी कायम की गई है। मध्य पूर्व के तनाव के बावजूद एमिरेट्स मॉरिशस में अपनी गतिविधियां जारी रख रही है और निवेश जारी रख रही है। इस विमानन कंपनी के एक डेलीगेशन ने कल पोर्टली में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम से एक रस्मी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने सर श्रेयो सागर राम गुलाम हवाई अड्डे पर एक एमिरेट्स लाउंज के खुलने के सिलसिले में बात की। आपको बता दें कि आते सितंबर महीने में उद्घाटन किया जाएगा। जून महीने में मॉरिशस आए 89,000 पर्यटकों की संख्या पिछले साल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई। जून 2025 में 97,000 से ज़्यादा पर्यटकों ने मॉरिशस का दौरा किया था, यानी इस साल करीब 8% की गिरावट आई है। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया के मुताबिक अगर आमतौर पर देखा जाए तो ये हालत उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, क्योंकि इस साल जनवरी से जून तक पर्यटकों के आगमन में 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। फ्लैक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगेगी। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज्यादा आसान बनाना होगा। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा। देश का सबसे बड़ा सड़क मूल ढांचा M4 के निर्माण कार्य इस साल के आखिर से शुरू किए जाएंगे। 30 किलोमीटर लंबी ये सड़क उत्तर पूर्व और हवाई अड्डे को जोड़ेगी। भारत सरकार की मदद से 30 महीनों की अवधि में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान और इराक की सरहद पर अमेरिकी हमले में 2 लोग जान से गए हैं और 11 लोग जख्मी बताए जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान जलमार्ग अरबनाए होर्मुज में किसी भी जहाज पर हमला करेगा तो उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।

0: आज की चर्चा।
1: आप सभी को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। वैसे आज हमारे साथ हमारी टीम में है टेक्निक पर कादर कुदादीन है, हमारी जो प्रोडक्शन सहायिका है उरुसा, और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो है निज़ाम। इन लोगों की ओर से भी आप सबका हार्दिक स्वागत है, और बेशक ये प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए ये चलेगा दिन के 10 बजे तक। और आज हमारे इस प्रोग्राम का जो शीर्षक है, ज़्यादातर हम लोग जानेंगे कि दुकानों में वस्तुओं पर कीमत किस प्रकार प्रदर्शित की जानी चाहिए, मार्कअप प्राइसिंग और यूनिट प्राइसिंग क्या है, और व्यापारियों को किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसी विषय से संबंधित ये प्रोग्राम चलेगा। और बेशक इस प्रोग्राम में फ़ोन करना है आप लोगों को, कोई सवाल या कोई विचार देना है, बेझिझक 4028085 पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और अब इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे साथ कंज्यूमर अफेयर्स के दो अधिकारी उपस्थित होंगे। फिलहाल हमारे साथ श्री रणवीर सिंह मितु जी हैं जो उपस्थित हैं स्टूडियो में, आप देख सकते हैं। आपका स्वागत हम करते हैं, नमस्कार भाई साहब। और बेशक हमारे इस प्रोग्राम में जितने लोग अपने अपना कमती समय निकाल कर हमारे साथ आए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने कहा कि पहले हम मार्कअप प्राइसिंग तथा यूनिट प्राइसिंग तथा व्यापारियों से संबंधित उन लोगों के कुछ सलाह भी देंगे। तो जैसे पहला सवाल ये हमको जब जाने के हमने के बताओ कि जो मार्कअप प्राइसिंग जो है वो कौन सी है और उसका उद्देश्य क्या है जीवन।
2: नमस्कार सबको, ये चाइना जाने के फ्री कुछ है फ्री एगो। अब जब फ्री में कुछ होला तीन काते फ्री है, एगो है फिक्स, एगो है मार्कअप, और एगो है लिबरल। तब एगो नुवला लॉ वोटे कल बहाय लाने वो ऑन विगे है प्रमे जुगे से मतलब प्राइस लेबल बोल जला किसी जला जला। तब प्रमे जाते चाइना जाने के एगो सब्सिडी कुछ है, एगो सब्सिडी गवर्नमेंट देवेला, एगो एगो मजे एगो राहत देवला कंसुमेटर के मजे हाउ फ्री वा ओरिजिनल छ पे करिक मा एगो एगो एगो सब्सिडी देवला ला मचे गवर्नमेंट पे केला था आधा मै कंस्यूमर पे केला। तब आइला से फिक्स सब्सिडी हा जन जैसे के गट लाने के उ 2025 में पांच गो प्रोजी में रहल, जैसे के दूध में रहल, कुछ रहल सब आदि और जाफरान में।

0: octobre, 50
1: 12 de mai, couche, mai, avril.
0: 50 roupies de l'hall, 15 roupies de l'hall, 6 avril de l'hall. Top, j'ai à avoir un, top, à avoir maximum retail. Un mois, oui, c'est bon, de la mock-up. Mock-up, qu'on dit, hein? Channel me, j'ai un, qui est parfois, il y a un produit, un subsidie fixe, à l'égo, un mock-up. Top, après, tu as un vol à l'ordre de l'alba, top, d'une autre sangue d'alba. Top, comprends que tu as un là, qui mock-up, quoi, tu as un mock-up, dès que, il y a un produit, hein, qui est, c'est pas grincique, bah, macaroni, bah, jadi ban telu sabang demi cara, kami agi itu makup lah, makup bila jela, okal pre di wahyeh hula, kaise, jab importasi hula, jab trader lo komersial importe kali lah, tapi produksian kontrol lah, tapi lo apaan pre ni dah langsa, tapi kahai kucu kaya langsa, jadi na importasi kali langsa, kau ego lalis submit kaya langsa ministeria, ministeria komersial kaya submit kaya langsa, ministeria u okal okal profit kalikala habe ja jen ego rapport submit kala koti importer kala ba jen contrôler ha ta ministère okal profit kalikala ta profit kalikala de la ta ego prix final de la ta boila ha priwa chawe chan be cheke oka se jasi chan be cheke ta mo kap ma wala sa be ja priwa il dépend hal hal ko importation hola ta prix monté char hela desan hola ta wi ka tin dekhi sa priwa me ego variation hola अब गवर्नमेंट कुछ कला का भाई जन मॉकअप एक्जिस्टिंग है लाने लाने पास है वो मैं तब भाई लाने गवर्नमेंट एको एको न्यू लालो अलग मजे आदमी लोग के चाहे जाने के जब स्पेयर मॉस जाते हैं सर तो चाहे जाने के कौन भोजी में उन लोग के सब्सिडी मिला था आगे तो नहीं बताओ सर प्रिंसिपल में जन प्राप्ति दे रहा प्री उकाल में नहीं बताओ था कहाँ पर सब्सिडी बा कहाँ पर ओके मार्कअप बा उन्हें आता है लोग पैसे करना चाहता प्री पारे तब गवर्नमेंट को लालू के अलग है ना कि ओके चाहे को डिफरेंसी करके
1: तो ऐसा में देखा जाला कि दुकान में जहाँ जहाँ बेचना सब प्रोड्यूस वस्तु चीज तो ढेर प्रोड्यूस बा तब जब ढेर पहुंची बात तो स्पष्ट रूप से कौन कौन मूल या चाहे डाले के वो होती लिखे के बताए के
0: जैसे
1: के
0: जैसे के हमने के मंत्रालय को कम्युनिके निकल हल सब पहुंची में ढेर पहुंची बा सब पहुंची में सब्सिडी नहीं है सब पहुंची में मार्कअप नहीं है एको सतन लालिस है उकार में मार्कअप है हम कहें मार्कअप बहुत समय हर बात पे आवत है जब मार्कअप बोला था इसे तो तो देशा एको एको प्री मिनिस्टर का अकेले कहीं ला तब देवी ला ट्रेड वाके बेचे के तब हाओ में गवर्नमेंट सब्सिडी डाले लगाब देशा प्रीवा मोटे देशा उतार उतार चला वाले दापरे लोट फ्रेड के इंपोर्टेशन के तब हाओ में गवर्नमेंट सब्सिडी डाले बाब जैसे फेक अल्बा डाले बाब कोन मुटों में 20 रुपी कोन बीफ में 20 रुपी जैसे बां कान चुना जैसे सुना कान चुना में this flakes aur brine mein jo flakes brine mein hila oil mein hai tel aur nimak ke hai pani mein ukar mein substitute ba 20 rupi aur jo solid tha ek baar se flakes jo miet mein hila aur solid mein okay mein jo oil mein hai selma oil mein jo mein brine mein hai wo substitute ba to aise dai la marque aur nimak disupi ba aise lentille noir lentille rouge aur red beans so mai jis supi ke dale ba तब हाँ सब भोजियों में जैसा मॉकअप में रहल तब ओके में सब्सिडी डाला जैसे कैसे बताएं एगो भोजी भी जाता है 20 रुपी 20 रुपी भी जाता है तो के जाता तो भी जाता है 30 रुपी 35 रुपी तब गवर्नमेंट ओके में सब्सिडी डाले बा 20 रुपी तब 35 से 20 रुपी तक 15 रुपी होल तब मोटी डिसान होला जब फेक मा जब जब ओगो तो वा के ओका इंपोर्टेशन में तनी बढ़ हल बात है प्रियो में वोयासन हुई ढेर ने हुई कैसे 20 रुपी बिके हबी तो भी जाता 20 रुपी 0.05 तो सकिला नेक्स्ट कंसाइनमेंट में एयरपोर्ट ही हुई सकिला वेटन रूपी जाए बेसिकली जिस रूपी हो जाए डिपेंड है में हाला मार्कअप तब सब्सिडी डाला अब जैसे कि हाई सब भोजन बोली और बन भोजी बा इन वो लालवा में कि जैसे कि बन हाई हलवा ओके मैं सब्सिडी डालवा जैसे बा कान वेजिटेबल तेल बा और आटा बा और ये वन फ्रोज़न वेजिटेबल जन जन जन फ्रोज़न रहेला जन पैक में रहेला और ये दूध सबा फोमाउ सबा फोमाउ से बोइला सब तो फोमाउ ब्लॉक बोइला सब इस्लाइस चीज़ नहीं मिला जन इस्लाइस रहेला उमे उमे उमे सब्सिडी है और वो वेटेन प्रोड्यूस बा हमने कहा इसमें जन मैं गवर्नमेंट देले बा मैं हर सब्सिडी एक्सटेंड कर देबा आगे पहुंच गए रहल अब वो लालवा से
1: जस्ट

0: होगल बा तब दलाल भाई लाल बाबा आदमियों के एगो एगो मारे सुविधा मिलको छी देखे चला खा लो के ओके एगो शिवसी मिलता खुबा कैसे जिमिन मोती होता निशान होता एगो न्यू कॉन्सेप्ट निकाल बा मिनिस्टर बोला यूनिट प्राइसिंग
1: हां और ये यूनिट प्राइसिंग और रिमार्कअप में डिफरेंस बारे
0: ना डिफरेंस नहीं बा कैसे बात है यूनिट प्राइसिंग कुछ बोलला यूनिट प्राइसिंग न्यू वाला लालवा से जैसे एगो फौजी बेचाता किलोग्राम में
1: अच्छा
0: तो ओके यूनिट प्राइसिंग चला डाल के किलोग्राम में जैसे लीला से फ्रोमाज बेचाला 250 ग्राम तो कल प्री रही वहाँ पर कल सब्सिड सब रही तब वो चला यूनिट प्राइसिंग डाल के सीधा जब फ्रोमाज 250 ग्राम है तो यूनिट प्राइसिंग वो किलोग्राम में रहेगा वो भी मिली लीटर्स में भी लीटर्स में रहेगा तब जैसे फ्रोमाज के प्री नॉर्मल रही 250 ग्राम की प्री वहाँ रही तो कम यूनिट प्राइसिंग डाले नीचे प्राइस बलवा में नीचे डाले यूनिट प्राइसिंग कुछ बलवा हाउ प्री वहाँ लेके एन किलो कर दी किलो पर है घाम पे बेचा था इतनी होला जो फौजी आवेला जैसे के एगो जाफे बेचा था 200 रुपी 100 ग्राम हो तो लालवा बोले था किलोग्राम में चंदा लेके यूनिट प्राइसिंग तब हवे जे एगो दाफे जिस रुपया था 100 ग्राम की था मिल ग्राम होला एन किलो तो के फाजिस कर 180 होला तो तो फ्री रख लिखा रही जिस रुपये में अपनी समय नीचे लिखी को बड़ा नीचे लिखा है यूनिट प्राइसिंग 180 रुपये पर किलो तो उसका आदमी के साथ कंपैरिजन से करे उबिया से कैसा बल्क बाइंग करे उबिया कंपेयर करे कौन ब्रांड लिया सर तो भाई वहाँ एगो सुविधा दे लगा गवर्नमेंट आदमी को कंपेयर करे के है चला समझे कि निमन से कुछ हम कब आदमी से बोले है साई मां फुवा बीसे रहल हम वहाँ काहे मोटो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देवा था तो हम यहाँ कौन से पता नहीं कोई टेक्निक है मौका पता को पॉइंट के हमने के कोई यूनिट भाव में लगे मिनिस्टर में वो फ्रीवन कालकिले करेगा तब कालकिले करेगा तब एगो रेवा लिया और लगो ट्रेडर के बेचे के तो हम फ्रीवे दे ला ओके जैसे हम फ्रीवा दे लगे मिनिस्टर के दे लगे फ्रीवा बेचे के 10 रुपये
1: अगर किलोग्राम लीटर पर भी लागू है
0: हाँ सब पर लागू है जैसे जैसे कैसे सुपर मौसम जा सकते लालवा और भी गोलवा प्रोमिस जी 2026 से तो हमने जाना सा चेक करे तो पौफा जैसे बोल जरा एगो एस एगो लिखा रहा है एस पी बोल जरा सब्सिडी फिक्स सब्सिडी बोल जरा क्या बोल जरा फिक्स सब्सिडी सा गवर्नमेंट वो दे ले बा फिर हुआ आगे जो सब्सिडी हुआ था अब एगो मैं जो फिर बोली जो मैं एम ओ पी बा तब दोनों जहाँ डाल के एस पी प्लस एम ओ पी तो हम डाल जा तब तब देखिए तब जब ग्राहक को जाए एगो स्पेयर बहुत से मेरे फ्री देखिए तब जानने से हाई में एस पी आर एम जब फिक्स बा और में हाई बा मोहकब बा तो फ्री वन चेंज कौन बाहर करे अरे को जाफे हमने के एगो सीधा मिनिस्ट्री में प्राइस फिक्सिंग यूनिट पी एफ बोल दिला हाउ में से ग्राहक सकें सब अपन जो को में जीते किने तो जो चीज किने को तो मैं सकें सब फ्री वन वेरीफाई करे फ्री वन प्रीवा अपडेटेड होला हर समय हर तीन दिन सर से कंपेयर करें प्रीवा तो फिर कंपेयर करें जब जेन से सुपर मार्से तो वेरीफाई करें सब प्रीवा अच्छा बा किन्ने अच्छा बा जे है वो ट्रेडर नहीं डाली तो वो एगो कंटाम
1: उसको जहाँ तक हम नमी के समझ में हर बार ये अफिशे होला प्री बहुत जरूरी होगा अब मान लो एगो वस्तु पर जो जहाँ शेल पर बा उमें प्रीवा ने लिखल बा साफ नजर नहीं आबा जब आबा काउंटर कैश पर तब अब उन लोग के चाहे भी एक उन लोग घंट हक एक मजे एगो वहाँ इन ऑफिशे होल बा हो प्रीवा तो यहाँ आके पे ये कर रहता उतने नहीं जानता वो ग्राहक कितना पे ये कर रहता तो कोई उल्लंघन हक हो गल बाकी कोई
0: जैसे कैसे अभी जाना था सब चीज़ में बढ़ाते और बाबा गवर्नमेंट इसे ये कर रहता जो इन चीज बन बेसिक नीड्स बा जो बेसिक प्रोविजन बा वो कम इतनी सुन बेसे आए बेसे करे के घटा हुआ है कि तब परचेसिंग पावर उग मौत हुई आदमी लोग के तब और जो चीज मौत हुई तो हम पर हमने कौन से नहीं नहीं है अभी जो इन बुलत है एक आदमी जला फिर सावला लाल वादे कौन से माते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे बोला फ्रीज है डाली के जब एगो फौज में फ्रीवन रही तो कैसे जनब फ्रीवा कैसे भी चाहता अब लाकेश में जब बता उसे ही कोनो फ्री बोले तो कि तू जनब तू नहीं जनब तू फोड़ा फ्रीवा दिखला तब जब लाकेश में जब हाँ एगो प्रॉब्लम बा फ्रीवा जब मौते पर आदेशान बा तब कुमार सोच चालब जब फ्री एगो लॉजिक में नहीं रही तो वो कौनता मौसम हो जाला 5 मिल से कुमार से होला 20 मिल ले जाला दीपा कुमार कितना लॉजिक में फ्री ने बा तभी के जब नुवो लालवा जो आलबा जो प्रोड्यूस जो मार्केट में अल्फियांस

0: Sidima, au quoi prix différent, hein? Quand tu vas au colmain, espirahi, prix ou main, et mon pirahi, l'icari au price table ou main, unit pricing, ni check kilogramme, qui n'a pas été, ou comme VAT inclusive, ou bien VAT zéro, ou bien VAT, VAT taille. T'as alors que j'en fais un boulet cradin qui haï ça, haï la loi là, haï la loi, zis produit, haï mais, tobacco product, mais, n'est la goût là, car haï parce que la loi, haï, ministre de la Santé, mais, public. Tobacco regulation blan 2022 parce que la loi qui hay tobacco determine bichala au quoi prix ne dala unit pricing ne kala dala
1: et que pas de la
0: ha ori jon trader log jon commercial log vat exemple jon vat ne pe kala au pas hay hay côté hay men ne la gola seulement jon commerçant va jon petit avasi bati la optique va hay la loi la gola au go logo par hein this is ego ban certainement d'appel tobacco product men hola hay hola
1: तो अब जैसे यूनिट प्राइसिंग पर भी चर्चा कर ली जा अब वैसे कितना प्रकार से कब बोले कितना प्रकार के प्री अफिशे होला
0: प्री जैसे जनब प्री हबी के नुवल आलवा जैसे फिर बोली हबी जैसे प्री होला जन सब्सिडाइज होला जन हाई होला अब दूसरा का प्री है प्री नॉर्मल उदाले को प्री ओकर में यूनिट प्राइसिंग लागू नहीं होला पसी उस आइटम प्रोजी में होला जन लालिस में बा ऊ होला Prix normal, je vais vous expliquer, c'est un rupee et naha, vat inclusive, vat nil, ou quoi prix l'ikai, ou quoi prix normal. De nouveau la loi, pas prix va 100 euros, c'est à la boli, vat l'hi, unit pricing l'hi, prix l'hi, kilogramme l'hi, millilitre, j'essaie, ego produit la liquide, 250 ml. तब ओके चाहला प्रीवा में यूनिट प्राइसिंग करे के चल एन लीटर नीचे दिखे के जैसे 25 रुपी 250 ml है तो 250 फाकत 1000 होय तो एन लीटर होय तो 25 फाकत 100 रुपी लिखा ले नीचे 100 रुपी ब एन लीटर तो प्रोड्यूस 250 ml का ना तो कर यूनिट प्राइसिंग डाला चला एडमिस की कंपेयर करे इसकी चार गोल अब तक प्रॉफिटेबल है या दो गोल हफ्ता या एक गो कैलकुलेट कर कैसे होय तब पोफा How produit ou même, how privé ou pas, how ou même promotion ça. Ha,
1: promotion, discount, how you t'as écrit que?
0: T'as écrit là, ça. T'as vu, admis que quand nouvelle loi alba, il y a pas visibilité prix là, t'as vu, ni même c'est privé ou hey, ça petit admis ça qui déque, puis ça après même la ferme après ça right to information, right to choose, alors au client que, au consommateur que, privé mili. तो से की वो इंफॉर्मेशन मिला था तब से की देखे कुछ करब किनब या दूसरा ब्रांड किनब
1: इस चर्चा को हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं और एक गाना अभी हम चलाने जा रहे हैं कि का देर से गुजारिश है और थोड़ी ही देर में ये प्रोग्राम जारी रखेंगे
2: कच्चू के पत्ता के बनिया के नहीं
3: बोला भैया बोलो
2: कोनो भी सवा
3: आगे बढ़ा

0: आज की चर्चा।
1: इस प्रोग्राम में आप सबों का दोबारा स्वागत हम करते हैं और आज की चर्चा में आज हम मार्कअप प्राइसिंग और यूनिट प्राइसिंग के तहत माल पर दाम कैसे दर्ज किया जाना चाहिए और व्यापारियों के लिए कुछ ज़रूरी सलाहों पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस प्रोग्राम में आज उपस्थित है हमारे कंज्यूमर ऑफिस के दो सम्मानित अधिकारी श्री मितू जी से अभी आपने से मिलवाया, उनसे बातें की मार्कअप प्राइसिंग पर तथा यूनिट प्राइसिंग पर चर्चा की। और साथ ही हमें अभी ज्वाइन किया है श्रीमती जयश्री पसावन सुपोल जी, आपका स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में और धन्यवाद आपकी इस उपस्थिति में। तो जैसे कि हम अपनी चर्चा करते जा यूनिट प्राइसिंग तथा मॉक प्राइसिंग पर, ये जो आप लोग ऑफिसर्स हवन जा कंज्यूमर अफेयर्स ऑफिसर, तो ये जन एस्पेक्ट वहाँ चाहे रोज करेंगे तो ये कैसे?
2: हाँ, ये सब एस्पेक्ट वहाँ हमी के कोलेग लोग हम रोज करीला सर, रोज के तेरे पढ़ाई सा फील्ड में जाएला सर, व्यापारी लोग से मिलीला सर, वो लोग के एजुकेशन करीला सर, बोले के कैसे चाहेला नुवो लालवा के तहत फ्री आफिशे करे के तब प्रोमियर जूलियट से रोज के सब कर्मचारी लोग तेरे पढ़ावन सा बतावत हवन सा बोलत हवन सा एजुकेशन करत हवन सा कैसे फ्री चाहेला अफिशे करे के। नॉर्मल है नुवो लाल वाला जो आल बाटे एगो नया चीजनक बाटे जैसे अफिशा दे फ्री, जैसे हमार कोलेग बोलक ए मॉकअप बाटे और सब्सिड बाटे, तो है जन फ्री बाटे है सब जन फ्री जन जन सब्सिड जन प्रोड्यूस सब्सिड पर बाकर चाहेला लिखे के जब फ्री वा डाल देब नॉर्मल फ्री जैसे सब लॉचिक के है जैसे डालीला सर रुपीज ओकर मोटांस और वात चाहना डाले के
1: बिल्कुल
2: वात। अब एगो नया चीज जो नाल बाते अब से ओकर चाहना डाले के एसपी बोला जा सब्सिडाइज प्रोडक्ट, तो से ताजा जो फौजी में लिखल बा एसपी वो बोला जला हो फौजवन में सब्सिड बा गवर्नमेंट में सब्सिड अलग बाते है चाहना डाले के, और जो फौजी में सब्सिड नहीं बाते उमें सब्सिडी नहीं बा उमें जिस एम ओ पी डाले जा सीताजा है सब फौजी वा कंट्रोले है, चाहे दुगो जब देखबा जाए बस सुपे मौसम में तो देखबा तीन कालीते फौजी बाते एगो फौजी बाते जो नए कंट्रोले होला उमें कुछ नहीं लिखा बा जिस रुपीज बाते और ओकर दाम, और दूसरा कैटेगोरी फौजी है कंट्रोले फौजी उमें लिखल बाते रुपीज ओकर दाम और आकोटे चना डाल के एम ओ पी।
1: और अब तक जैसे पहला जुलाई से बोले ये चाहे ऑफिशे हो के तो रोज तो इंस्पेक्शन होता है इंस्पेक्शन आपके ऑफिसर्स देने से तक कोनो कहूँ पर आल बाकी उन्हें अने आबाद कर लन सर ऑफिशे

0: पिशाब नहीं डालने
1: हाँ तो जन जे जे लोग नहीं अबाइड करते हों सर एगो ओफेंस करे लोग सर तो है ओफेंस हुआ के एगो फिक्स पेनाल्टी लगेला चलान कटाल जाला तो देखा रही सर स्टैटिस्टिक हमार लगे अभी नहीं बाते में से म बाते स्टैटिस्टिक बहुत जगह गल है सर जहाँ एजुकेशन पहले वैसे हो गल बातें फिर से गई सर देखा था
0: तो पर अभी नहीं अबाइड करना
1: नहीं कुछ नहीं कर लिया सर तो उन लोग के चलान मिलल बाते एफ एगो फाइन जैसे बोले सर फिक्स पेनाल्टी नोटिस सर्व होल बाते उन लोग पर
0: अच्छा वो कितना सकेला उन लोग पे
1: 5,000
0: और जी ऐसे यूनिट प्राइसिंग जो भाई अभी कुछ क्षण पहले बोल किन किन इकाई पर प्रदर्शित होला जैसे किलोग्राम लीटर ये सब अब बोल तो ये सब जब होला मान लो एगो कमेसों उ सब नहीं जानता एगो ग्राहक के नहीं जानता तो ओकर फुट था
2: हाँ तो कमेसों के हाँ ओके छाना जाने के लाल निकल बा कम्युनिके मिनिस्टर निकल ले बा
0: और ये जो लिखल बा ओके चाहे साफ मतलब ओकर जो लिखाई जो प्राइसिंग वा ओके चाहे जाने के पढ़े के निमन से
2: हाँ जैसे कमेसों थे इधर लोग व्यापारी लोग वो लोग लाल हुआ लोग जान गल बा कहीं छाना करके तब कहे डाल बा एगो हाउ एस पी आर एम ओ पी डाल बा इस ताले बोली एगो एगो फासो डाले के चाहेला जब आदमिया जाए तो देखी तो जाए ना है पहुंचवा में बा कैसे हम कोई बोला एगो डिफरेंस ऑफ प्री नॉर्मल एगो प्री जोन में सब्सिडाइज प्राइस बा ओबी एम ओ पी बा हाई ट्रेडर लोग वो लोग जाए लोग बोले से इन्फॉर्मेशन मिल गया समझे करके कैसे बोला कुमोसो के लिए एजुकेशन करे एस पी ए कर कैसे कर दिला तो फिर से कैसे इंस्पेक्शन करे तो नहीं बता कौन था मौसम लीला अब हम जिस कौन था मौसम देव सा हाँ जिन्हें को जब एजुकेशन कैला सर कोई ऐसे कुछ ना करके और ग्राहकों को बोली ला सर जिनमें नहीं बा नहीं होता लोग जाने था पहुंचा में सुसिद बा ओका फ्री में नहीं डाल बा नहीं सर कैसे मिनिस्टर लगे सरकार में सरकार की हॉटलाइन है
0: तो अभी तक कोई शिकायत मिलल बा
1: हाँ ढेर ढेर जगह से शिकायत मिलल बा तो उफशे लोग जालंग सर वेरिफिकेशन सब करे कबो देखिला सर जब जाए ला सर तब प्रिवा सोजे हो गल बा तो एगो कॉन्ट्रावेंशन नहीं है जब जब जाए ला सा देख ला सा सच्चे के प्रिवा नहीं समझे बा तब एगो कॉन्ट्रावेंशन है कॉन्ट्रावेंशन है 5,000 इतना रोजमर्रा के हो गल बातें अब कंप्लेंट हमी के सेक्शन बातें जहाँ रोज के कंप्लेंट मिलेला कंप्लेंट वा थ्री ये सब हो के तब ऑफिशियल लोग जा लंग सा तेरे पर देख लंग सा कौन चिप के कॉन्ट्रो कंप्लेंट है ऐसा जब
0: तो जब आप लोग इंस्पेक्शन करे लग जा कौन चीज देखे लग जा बा निमन से लिख ले बा ओकर प्रिवा जो मिसिंग बा कौन चीज बा
2: ना हम जब देखी ला सर प्रिवा प्रमेर प्रमेर दफे ऐसे यूनिट प्राइसिंग अलबा प्राइस लेबल है उस समझे बोल बा कैटेगरी प्रोड्यू बा हमने जगह जाला सा कैटेगरी प्रोड्यू तो इन सब्सिडाइज है जो मार्कअप पर बात जगह जाला सा तो जैसे तारे बोलिए हमने कि वो सीट बा प्राइस फिक्सिंग यूनिट एक वेबसाइट बा हमने सुअर प्लस हमने डिवाइस में लेके वेरीफाई कर दिला सर और हम प्रिवा के ताली के ला पारे बा कि नहीं जो नहीं बा तब देखिए सर प्रिवा कब समझ हो बा बस कि हमने कहा उसी तरह में इफेक्टिव डेट बा कब प्रिवा समझ हो बा बस को मैं ऐसा लोग वो लोग इशारा हर रोज के वेरीफाई करके ढेर पहुंची बा सब वेरीफाई करते रहे प्रिवा ये बोली रहा उसका हिसाब से वो लोग इशारा प्रिवा समझ करके जैसे कि प्रिवा आज मोटे बा कल नीचे कमती कर बा तो प्रॉब्लम चला प्रिवा कंट्रोल सुपर है जैसे कि
0: 0.98
2: जब तक होता को गर्मी बोली नहीं उफान सब प्रॉब्लम तो प्रिवा में छा डाल के वैंतने पर काटवा जुट और वो देखिए अगर सुविधा करके कैसे प्रिवा डाली सकी पर काटवा जुट नीचे डाली सकी सैकड़ों डाली जिम्मे सकी जब गर्मी पे करी पैसा स्पेस से सैकड़ों छूट रही तब आप जिम्मे कौत से पे कर अब ना तो हवाई खाते बोला से जो चिताबाजी रहेला वो लोग तो फिर कौत नहीं बा लोग पैसा ही ले लोग सर तब वो फौजी हाई में चला पाँच सौ सैन जिसने पर काटवा हुई तब कैसे चौथ कर जैसे तब उन लोग के
1: महंगा नहीं रहेला इफेक्टिव डेट देखिला सर तो देखा तो इफेक्टिव डेट

0: जैसे सुपर मौसम में फौजुआ रोज के बेचा जाला तो जिक कबूतरबाजी में फौजुआ नहीं बेचा ताते तो ओकर अंशेंस तो खुगल बा सेलमा जब जायला सर वेरिफिकेशन करी सर जब पीएफयू से कंफर्म है उस सब हो जाला तब कोठा वंशा दे ला सर
1: और जब डिस्काउंट और प्रमोशन रहेला तो तुरंत हो व्यापारी के चाहे अपन संजय करे के अपन अफिशाज दे प्री
0: हाँ चाहे ला निमन से लिखे के जे गो
1: प्रोड्यू में लोग कैसे जाने कि ये लोग प्रमोशन ओ बता दे बोलन सा आप लोग अफिशाज ने
0: प्रमोशन
2: प्री नॉर्मल
1: लिखे
2: फिर मैं प्री वा कंट्रोल है हाई प्री वा चाहे बेचके तो प्री नॉर्मल वा लिखे हो तो कल लाहो प्रमोशन वाली की चला कौन सा कमती रहेगी जैसी नहीं तो कहाँ नहीं हमें बोली लसम आलू को जाफ़े ऐसी सोचा करो जैसे कि ट्रेडर लग बा बंतावाजी लोग नॉर्मल मो है सब हो जीवन जन मार्कअप में आल कंट्रोल है वो लेके एको सप्लायर ने छोड़ी ला अगर एको प्री में देवे लग सा तो संगे से बेचे तो फिर मार जे हो हो जीवन चाहे बेचे के 10 रुपी सप्लायर के 8.50 में दिला जो सप्लाई अलग जो जो कुमार से लाली सुमित का मिसेल मिसेल को प्री कैलकुलेट कर लग तो दिला को में थ्री दवा जो नाल तो आल जेक्ट में हाउ को में ऐसा लगे तबाजी लगे तब ओका से प्री वाले लग फिर कुमार जो मिनिस्टर के दबला 8.50 बेचे के ना को 10 रुपी दिलवा बेचे के तो वो देखो डिस्काउंट के ला 8.50 बेचे लग कौन से तो अदमिया से कि कुमार तबाजी की 10 रुपी बेचे को प्रॉफिट मिली चीज तब कौन चीज होला तो पफो लोग चीता बाजी लोग धीरे धीरे लग सा तेन तेन लग सा सुपर मौसम है कि नहीं तो वो कपड़े तो फिक्स है वहाँ पर प्लस के ता डिस्ट्रूबे चता नहीं इसके फिजा के डिस्ट्रूबे चे पफी नहीं मिली चाहे निकल बोली ना सा हाई सप्लायर से लेके एक उस अफेयर और ये सकी लगो स्टॉक ले ले हम सा 3 महीना होगा बनने भी चालवा तो प्रीवा तो सौ जो था कि सकी लगा डिस्ट्रूबे चाल बेचे कि अब चाहे नेफ पुपी चेके अब चाहे नेफ सन गए में चेके तो बोले कि उठा चढ़ा वाला प्रोग्राम सकी लगा पेजियो सा गायो सा हाई कैन अदमिल के स्पीकर ले सा कि हाई सब मैं सीधा तो स्टॉक के कंटेनर ले प्री ऑन वी गेट इन बा वाला बहुत दिनवा के हाउ में दिखला सा
1: और ये प्रोग्राम हम लोग अपने ग्राहकों उपभोक्ताओं के हित के लिए प्रस्तुत करते हैं और अगर उन लोगों को इस तरह की जो आप बता रहे हैं वो दिखाई नहीं देते हैं मतलब उन लोगों को जायज है वो शिकायत करें तो कैसे वो शिकायत करें जो हॉट लाइन तो हमेशा रहे
2: हाँ, जैसे जैसे सारे बोल दी ग्राहक लोग के बोलना उनके को रिस्पॉन्सिबिलिटी जाने के कौन चीज किनी आते हैं सर वो कल फ्री कौन चीज है जब मैं गुजाफे तब किने हम जाएंगे उस 5 रुपी है तब गए थे वहाँ पर देखते 6 रुपी है था आगे से हम क्या इन्फॉर्मेशन मिला 5 रुपी है ना तो वहाँ गए देखे 6 रुपी बता अपने अच्छा बा तब सेकेंड से सुने करे 185 में सेकेंड से अपन नाम दे कंप्लेंट करे सर सर एनोनिमस है ना लोग के जान पहचान नहीं दिवाले करे सेकेंड से वो कंप्लेंट करे तो दोनों काम है जो नाम दिलवाने दोनों काम है आक्षण पा रही रही हमने जाप सर जाप सर अब समय एक दफे बा आज वो गल प्रीवा से सुबह बा दो प्लस 5 रुपये हमें ठीक है वो कंप्लीट कर लग आज कंप्लीट कर रजिस्टर होल हमें कि 2 दिन लगी ला
1: जाएगी
2: जाएगी अब जब हमने जाप से हुआ जब जाप से देखा था प्रीवा आगे हाँ 5 रुपये बा तब प्रॉब्लम हो जाला जब आदमी जब किडनी बा तो एगो रेसी बा 6 रुपये के तो रखी ला तब तब आयला समझ बोले कि आगे एगो एगो एगो स्टेटमेंट देखे कोई सा लाकू हमें कहला सा ऐसे तब जब डायरेक्ट जब सर कौन सा मिल जाता ले सर जब नहीं रही था तब जब याद जब अपना नाम मिलवा तो कोई ऐसा लाकू के प्रोसीजर करेगा
1: और आजकल देखे थे जा कि दुनिया में व्यापारी हालत जो कठिन हो जाता तो एक संविधान कौन सी है
0: ये तो हम ही के हाथ में नहीं है बस ये सब ढेर फौजी एहपोते कर रहा सर लोग के फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे बोलिए सर हम ही के हाथ में नहीं है सेलमा गवर्नमेंट सब्सिड के तरह प्री कंट्रोले के देखा था कब से पूरा अफोर्डेबल हो कस्टमर लोग खातिर
1: और वही देखी ला जाके हमने के एम्पोर्टेशन चाहेला कम करेगी
0: हाँ
1: कम करेंगे तो सरकार के तरफ से कौन कौन कदम लेवल जाना जैसे
2: मोरिस जाना 80% लोग के प्रोड्यू एम्पो में ही रहा बस मोरिस हमने के उकेन कुछ होती ध्यान नहीं होला सब चीज़ों के पहले डिपेंड है कि ऐप होती है अब जाना था लेमोन की सिचुएशन लागे होला फ्री जा रही ला होला सब चीज सब तो पारामीटर इम्पैक्ट के ला एम्पो में कॉम्पोज ना तब जब इम्पैक्ट ला एम्पो में तो हाउ बर्डन वाइज बोले सर कंसोमेटर में जाला जैसे को एग्जांपल होता है एगो एगो प्रोड्यू एम्पो तो 10 रुपये पे करता है आज तक कंसोमेटर 2 रुपये करता है यहाँ पर तब हाउ प्रोड्यू अब डीओ भी 3 रुपये बोल बा अब जैसे आए थे मोस में हाँ भाई पहुँचे तो इंडियोज में भी ज़्यादा अब सेज हो भी बोलबा तब भाई सब प्रॉब्लम

0: अब जैसे बोला गुवेन में कुछ कल सब देख लक सब लाफेवन जो सुबसे नहीं डाली तक तो ढेर चढ़ जाए तब ऐसे ही कर लग एगो एगो एगो बीजे में बोलते हैं कि सर पाए स्टैब्लिशन फंड एगो एगो फंड हक मजे सब्सिड के लिखेला हलाने के लागू होला तो हम खीवा कुछ केला वो अनलग सेटन फौजी पहुँच गुल हल अब ओली एक्सटेंड कर लग है जैसे बोला सर कुछ यहाँ करे के एयरपोर्ट आसो में हमने बोला सर लोकल प्रोडक्शन छा करे के
1: बिल्कुल
0: जैसे बोले सर कुल का प्रोडक्शन करे तो इंसेंटिव छा दे के गवर्नमेंट के नुवो बिजनेस करे के नुवो प्रोजेक्शन करे के नुवो नुवो नुवो
1: स्ट्रैटेजी
0: डिवाइस करे के कैसे पीवा खाना सर नहीं चला कैसे बोले एगो मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी छा जाने के जो लेमोन में नहीं रही खाए के हम तो एयरपोर्ट में रही सर दूसरा अभी दूसरा पी एम इनके नहीं बेची हम सब पहुँचे तो कुछ कब सब नहीं लोकल प्रोडक्शन हुई था सकन सेकेंड एक्सटेंट में सकीरा मौसम के सप्लाई करे नौवीं खातिन गवर्नमेंट आना था जिन नहीं सीखा था कहीं नहीं सीखा करी जिनमें कर सका था बस जहाँ लिखे के पब्लिक डेट बा और एपोताशों बा कितना एपोताशों करी कितना जिमने करी और वही कारण अमीर को बोला ढेर एगो ऐसे बोला ब्रांड के पीछे नहीं भागे के बा एगो एगो पारे फोजी देखा सा अब अमीर के सब लोग के चॉइस है ना बस लोग के धुआ हरा के चूज लोग के चाह के देखे कुछ करके सिनेमा मूवीज में बा डिटॉक्स पे मौसे बा एगो मैम प्रोड्यू के डिफरेंट फॉर ब्रांड बेच रहा था अभी लोग के सुविधा के देखना कहाँ जी अंजा लोग बजट के
1: हिसाब से
0: बिल्कुल हाउस पे मौसे ना हाउस पे मौसे ना हुई मतलब स्मॉल बैंक छा करके देखे के करे के झटी ने किने के जो चीज चाहे ना किने के बजट के फ्रेमवर्क में रहे के
1: जैसे कि हमेशा बोली रहा सा जैसे अभी बोला लोकल प्रोडक्शन और थी गोफो सोलर एनर्जी
2: गवर्नमेंट देवता थे और ये हम के दूसरे मंत्रालय बाटे एस एम ई सब ये सब लोकल प्रोडक्शन लोकल इंडस्ट्री के प्रमोट कराता थे फूड सिक्योरिटी उसी ओह बाटे जो खान पान के चीज देखते हुए और घर ग्राहकों को रिस्पोन्सिबिलिटी बाटे जब खरीदारी सब करते हुए
1: जैसे किचन गार्डनिंग वो जरूरी
2: किचन
1: गार्डनिंग गवर्नमेंट
2: अथवा डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर ढेर स्कीम डलक बात तब वो लोग के चाहला जानकारी ले के जैसे फागे बातें बहुत स्कीम देलक
1: बजट बहुत मतलब अलग अलग
2: अलग अलग मंत्रालय के
1: सहयोग मिलेला तो
0: सब अच्छा बोला प्रॉब्लम जो कुछ आदमी लोग निभा काम करे के ना सबको बता बीओ में काम करब सा कोई तो हाथ नहीं रहता लाते है मैं ईदो को नहीं को
1: बाजे
0: जितना आदमी करेला ढेर कम थी बा तो जब कम थी प्रोडक्शन होला और डिमांड ढेर होला तो फिर तो मौत हुई तब हो आदमी लोग बोला कि माजा वो स्टिल अडोप्टे करे के जैसे आगे क्यों निकल रही सब कोई कागो में काम करत हल प्रॉब्लम नहीं रहा अब तो सबको बिहो में काम किया कोई तो नहीं बोला अच्छा मेकानाइजेशन होल बा मशीन डाल बा सब कुछ एक्सटैक्टली पानी गिम फैन बन बन चिले गिम गिम कुछ हो पहले हाथ ही करके ना अच्छा मशीन डाल के तो प्रॉब्लम जब हर कुछ जब बाजो जब गिम मौत बा का है उससे लेबर कम थी बा जो काम करेला कागो में तब वो लोग आगे हाँ सब बनो जब चल रहा है तब कोई तो नहीं कहा काम करके
1: बोले लेकिन सब में आशा करते हैं जितने ग्राहक हमें सुन रहे हैं जितने श्रोता और दर्शक हम लोगों को सुन रहे हैं देख रहे हैं वो लोग इस तरह की जो मतलब फैसिलिटी सुविधाएं वो अपनाएं एक और गाना कादिर की तरफ से

0: और आज की चर्चा प्रोग्राम में दोबारा स्वागत करते हैं आप लोगों का। और आजकल के महंगाई के ई जमाना में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की प्रायोरिटी कौन सी है जयश्री जी?
1: मिनिस्टर के प्रायोरिटी है कि सब लोग के चीज मिला ताते बेसिक चीज़ जैसे बोली लासा जैसे खान पान बातें सब कोई के अवेलेबल बातें जेगो शॉर्टेज नहीं होता और वो एगो अफोर्डेबल प्राइस में वही से गवर्नमेंट आल बातें ढेर फौजी में सब्सिड लगवा ढेर फौजी जो खाए के फौजी है एसेंशियल उमें कंट्रोले बातें खाए के और लड़का लोग के फौजी जैसे बोली सा कुछ मांजे बेबे ये सब चीज में कंट्रोल बातें सब्सिड बातें तो हमें के प्रायोरिटी है कि सब लोग के एसेंशियल बेसिक चीज मिला ताते और ये प्रीवो एगो अफोर्डेबल प्राइस पर
0: तो ये मिनिस्टर बगल से ये सब जनता लोग के राहत दे के लोग के फैसिलिटी दे के ये सब तो अभी हमने के बोला तो व्यापारी के जो कौन कौन संदेश देबा कौन कौन चाहेला उन लोग के मुख्य रूप से नियम में लागे आने के
2: जैसे जाना सा हम मिनिस्टर को मेरा सा कौन सा प्रोटेक्शन हमने ग्राहक के अधिकार के प्रोटेक्शन के इलासा

0: जैसे कि सपो जीवन में सुपची डाल बा मैं लोग पर सिंह बाबा बरकरार रखे के थ्री डे कुछ भी लगता थ्री डे लोग लोग तो बीचे लग सा कंसुमाती लगा जो लोग चाहे कोई फ्रेमवर्क का लीगल फ्रेमवर्क का ऑब्जर्व कर के जैसे कि फिकुआ लालवा डाल बा जैसे यूनिट प्राइसिंग बा वो लोग के चाहे ला वो लोग के प्री वेरीफाई करके देखे कि वो लोग के प्री अच्छा से आवश्यक हो सके ना वो प्रोड्यूस जो सब्सिडी बा वो प्री वा लागू बा है दिन वा के वो भी प्री वा समझने का दंसा तो है वो लोग के एगो एगो एगो संदेश का मजा सब चीज वेरीफाई करके हमें कौन से मार्केट सुफेन आला एंड वन इज फेर
1: हुई हमेशा से वो लोग के चाहे अपडेट
0: अपडेट है के और ये सब प्री डाल के सब चीज में जैसे प्री नहीं रहता को कौन हो जाए और ये को प्रमोशन डालता बट ट्रेडर लोग हां प्रमोशन अच्छा लोग के सिस्टम में लेकिन यहां पे पहुंची डालवा प्रमोशन जिस रुपए से भी रुपए ला के इसमें जिस रुपए पे करते हो प्रॉब्लम दूसरा कौन था मोशन डाला और ये इंफॉर्मेशन था दे के मैं कंफ्यूजन ही क्रिएट करके कंसुमेटर के उसके अब लंस मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो को कौन था मोशन हुआ तब काहे हमने कही रहा सा कंसुमेटर खातिन मुझे लोग के दुआ प्रोटेज हुई तो हमें ट्रेडर लोग के चला लोग के हाथ संगे लेके हैंड टू हैंड रहे के कंसुमेटर निकल वो व्यापार करता हम कंसुमेटर है ये बड़ी खरीदारी क्लब उकलो बिजनेस अली हमू साथ से वो कॉमन कंसुमेटर के साथ से वो वो खाते में बोइला सा जितना कानून बा सब के पालन करके लालवा जैसे बा स्ट्रिक करके इधर नहीं होता हमने काम धाई है जैसे लालवा के पालन नहीं करवा तब कौन था हमसे जब सा तब कौन था हमसे मजे को एको एको मचे बोल रहा एको एको खुशी नहीं दे सा वो प्रॉब्लम बोला तब दे ला सा कहाँ के ला सा बस प्रोटेज के ला कंसुमेटर करके जैसे बोलिए को प्री बा जैसे बेचाता लाकी इसमें तब कुछ हो खरीदो फोटो कर लग हम कहे कौन था आंसर लिया जब कंसुमेटर के पुतेज कर लग जे इन्ने कर लग चल लाभ जानवा बट तब हम निसागर ने ऐसा सब सिवाय से नहीं रहेगा सर वो कहते मांग कर सब कंसुमेटर लग से जहाँ पर ही कोई प्रॉब्लम हुई तो ऐसा करना सही कमी के हॉटलाइन ला निविया कात्रे लेंडी आवंटे जिले तो वो कंप्लेट कर डर नहीं इस बार सब नामों ने दे सब कंप्लेट कर सब एनोनिम कब होता तो हमने जाइनस कॉम्प्लेक्स में ग्राहकों को पहुंचे के नसब कॉम्प्लेक्स में एनोनिम किया था हमने कुछ नहीं किया था ना ऐसे नहीं है जैसे एनोनिम होला तब जाइनस हमने तो काहे नाम बोल सा देख के जब हमने वो कौन था वहाँ से जब तक तुके बोला अब सब कौन एक्शन ले ली सा कौन समाज है कैसे प्रोटेज कर ली सा वही करने को ऐसा डू नॉट है ला कॉम्प्लीमेंट करके देखे हैंड टू हैंड मजे ट्रेडर और ही कौन समाज है जब सब निमन चाहिए तो कौन समाज है प्रोटेज हो वो सांचियों का पर्सिंग पावर मेंटेल होगा और ये ओके अच्छा लगी जब जाके ने के प्रॉब्लम हुई मुझे उनको कॉन्फिडेंस रही नहीं बोली मैं गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा था सुबह ट्रेडर मालूम नहीं था सुबह एक पी एस एफ सब बंद डाला जान ला तब होगा दिन जब दिनों दिनों को चली तब पैसे समझे हुई तब बोले हाँ तब देखा तो कौन प्रॉब्लम बा कौन सोल्यूशन अब सर लेकिन आज इस क्रिटिक के ब्लाम करी जाके
1: और जब वो लोग आप विषय कर रहे सर जैसे जी जब आप लोग का इंस्पेक्शन करी ला जा तो उस साफ सकेला पढ़े के जैसे कि जब आप लोग देखे रहें जा देखा कि नहीं
2: हाँ लालवा बोलक बात है फौजी जब प्री चाहला एगो एगो निमन क्लास में डाल
1: स्पष्ट
2: हाँ स्पष्ट शब्द से भी कर दिया कॉस्पिशियस प्लेस ताजा जब हैजा फौजिया बा ओकर प्रीवा हैजे चाहला रही कि नहीं कि हैजा दूध बाते तो ओकर प्री
1: बगल में
2: हो जा बाते नहीं चाहला भीरी रहे कि ओकर प्री
1: अच्छा अंत में हम कौन संदेश दे बा हमने के जितना लोग देखा था इंटर देखा है
0: जैसे बोला एंड में पारी होला कंसुमेटर की रिस्पांसिबिलिटी है लोगों के इंफॉर्मेशन है बोलता हूँ पूर्व डिसीजन लेके कुछ किने के चाहे ला नुवो लालवा ना था गवर्नमेंट नुवो लालवा ने बा लोगों की सुविधा के लिए प्रोफिट के लालवा कुछ बोला यूनिट प्राइसिंग नहीं रहता कुछ चीज कंपोनेंट होता 145 टेलीफोन निकला हम मिनी सेवा कंसुमेटर के जब तक पहुंचते कर रहा था लालवा
1: के लाभ खाते हैं
0: हां लोग के लाभ खाते हैं मतलब लोग के पर्चेसिंग पावर खरीदारी की शक्ति बरकरार रखेंगे खुद होता मोटे निशान होला शर्मा पहुंचते के रहा सा आसवाज उनका उनका ही रहा सा तब विखान ने बोला सब देखे कुछ किन दूसरा प्री देखे के कुछ किन दूसरा खाए किन दूसरा बीजे में रह के लालवा बा फौजी बेसे होल बा सब किने तो लोग की सुविधा के अब और ही आना था गवर्नमेंट और ही लालो आनी प्रदेश के लिए कौन समाधान
1: और हम निके प्रोग्राम सुनते रहिए और देखते रहिए कुछ अंत में कुछ बोल
2: जो जैसे ग्राहक तो अपन बीज से चाहना देखे कि बीज से के आधार पर खरीदारी कर और जहाँ प्रमोशन सब बात देख के निमन से किने के चाहना नहीं जैसे प्रमोशन बात टूट पड़ किने के नहीं ऐसे नहीं स्मॉल बाइंग कर हमेशा और ओवर कंसुमेशन नहीं

करो। तो इन सब जानकारियों के लिए श्रीमती जयश्री बसावन सुपोल जी को धन्यवाद देते हैं, साथ में श्री रणवीर सिंह मिट्टू जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और दोस्तों याद रखिए, साफ और सही प्राइस डिस्प्ले सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि ग्राहकों के लिए ग्राहकों के प्रति ईमानदारी और भरोसे का प्रतीक है। और जब व्यापारी नियमों का पालन करते हैं और ग्राहक जागरूक रहते हैं तभी एक निष्पक्ष और मजबूत बाजार का निर्माण होता है। तो आप सबों के ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कादेर उरुसा और निजाम को धन्यवाद देते हुए आप सबों के ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार और आदरणीय।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमायरा अकबर अली से। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। 30 बिलियन रुपए की लागत पिचोली ठेके के सिलसिले में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और मनीष गोबीन को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का फिर से सामना करना पड़ेगा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये एक बड़ा चरण होगा। पूर्व सरकारी नेता को जांचकर्ताओं को ठेका देने की सभी परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अभी तक कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि उनके वकील रव गुलबुल व्यस्त हैं। पूर्व मंत्रियों से भी तहकीकात की जा रही है। कल पुराने वित्त मंत्री रंगनादन पर्याची से पूछताछ की गई। जून में

0: पब्लिक ऑफिशियल यूजिंग ऑफिस फॉर ग्रेटिफिकेशन के अस्थायी इल्जाम के तहत पूर्व मंत्री सुदेश कालीचरण के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कल पुराने आईसीटी मंत्री दीपक बाल गोविंद को सेंट्रल सीआईडी में जांचकर्ताओं के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। इस शनिवार को हाउस होल्ड रूफ टॉप सोलर पीवी स्कीम की लॉन्चिंग की जाएगी। सीबी और डीबीएम सुबह 10 बजे से क्यूपीप के अपने पुराने कार्यालय में एक सत्र का आयोजन करेंगे। इसके दौरान सप्लायरों और फोटोवोल्टाइक प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों के साथ बातचीत की जाएगी और विचार विमर्श भी किए जाएंगे। फ्लैक इलाके में अब बुजुर्गों के लिए एक नई स्वास्थ्य सेवा दी जाने लगी है। कल क्वीन विक्टोरिया हेल्थ पॉइंट का उद्घाटन किया गया, जिसका मकसद इलाके के बाशिंदों के लिए सेहत की सेवाओं को ज्यादा आसान बनाना होगा। अगले हफ्ते से ये केंद्र खोला जाएगा। विदेश में पेरू की राजधानी लीमा में घर में आग भड़की, एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हुई, जिनमें 5 बच्चे शामिल, 2 लोग घायल हुए हैं। अभी वहां की स्थानीय पुलिस जांच कर रही है ताकि इस आग की वजह मालूम की जा सके। और एक नागरिक परमाणु प्रोग्राम को विकसित करने के लिए अमेरिका और सऊदी अरब ने एक संगी मील की हैसियत रखने वाला समझौता तय किया। इस संधि को एक शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करार दिया गया है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को सऊदी के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम में बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। शुभ समाचार सुनिए। लाग्रीमा सैपिया में 62 साल के 62 years old श्री स्वागत चतुरी, जो मनोज के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज 4 बजे इनके घर लाग्रीमा सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकुंस्टांस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में दुबे परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: Your news on NBC Play, and NBCRadio.tv,
2: NBCRadio.tv. 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस।

चलिए श्रोताओं, 10:03 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा। वैसे भक्ति की धारा जो है बहने जा रही है इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। वैसे श्रोताओं, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, बल्कि ये मन की वो पवित्र भावना है जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। जब मन में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम जागता है, तब जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश फैलता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

श्रोताओ, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे भक्ति की बात जब हम करते हैं तो भक्ति हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ जो है रहती है। जब मन में प्रभु का स्मरण होता है तो कठिन रास्ते भी आसान लगने लगती है।

चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम आपके नाम हम सजा रहे हैं समय। वैसे भक्ति वो मधुर संगीत है जो आत्मा के तारों को छू लेता है। जब दिल में प्रभु का नाम बसता है तो जीवन की हर सुबह उम्मीद और हर पल शांति से भर जाता है। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।

श्रोताओं, सच्ची भक्ति हमें केवल मंदिर तक नहीं ले जाती, बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और मानव सेवा की ओर भी प्रेरित करती है।

0: घड़ी में और इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं भक्ति धारा कार्यक्रम। तो चलिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम तुलसी चालीसा आपके नाम करेंगे। आपको पता है कि चालीसा जो है इसका बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए, क्योंकि जो चालीसा होती है जब हम इसका पाठ करते हैं तो मन में अशांत, वैसे मन में अपार शांति की अनुभूति होती है। मन चलचल हो, आप विचलित है तो चालीसा का पाठ करने से मन में अपार शांति की अनुभूति हमें होती है। तो चलिए आप सभी लोगों के नाम जो है हम तुलसी चालीसा जो है इस कार्यक्रम में शामिल कर रही है। और आपको पता है तुलसी का जो पौधा है हम अपने घर आंगन में रोपते हैं और इसका जो है पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि हमारे घर आंगन जो है पवित्र हो जाती है। माँ तुलसी जो है हमारे घर आंगन की रक्षा करती है। तो चलिए उनके नाम जो है ये चालीसा प्रसारित है रेडियो मॉरिशस पे।
1: तुलसी की महिमा अपरंपार है। तुलसी पृथ्वी को ईश्वर की बहुत बड़ी देन है। वेद पुराणों में तुलसी की महिमा के बारे में अनेक कथाएं कही गई हैं, परंतु तुलसी की सबसे बड़ी महिमा है तुलसी के अंदर छुपे हुए अमृत के गुण। जब समुद्र मंथन से देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ तो सबसे पहले उसे पृथ्वी माता को समर्पित किया गया। जहां अमृत सींचा गया उस स्थान से एक अलौकिक वनस्पति की उत्पत्ति हुई। वो वनस्पति है तुलसी, जिसे हम तुलसी मैया के रूप में जानते हैं। तुलसी मैया देवताओं को अति प्रिय है। लक्ष्मी का अंश होने के कारण ये भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु तथा उनके अवतारों श्री राम तथा श्री कृष्ण को समर्पित की गई कोई पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती। प्रभु को भोग लगाकर जो प्रसाद पाया जाता है उसमें तुलसी का होना अनिवार्य है। तुलसी चालीसा के 40 छंदों में तुलसी की इसी महिमा का गुणगान है।

चलिए शूट आउट, 10:50 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे चौपाइयाँ। आपको पता है कि चौपाइयाँ जो है पढ़ने से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि धर्म नीति और ज्ञान की बातें जो है हम लोगों को प्राप्त होती है। तो चलिए आपके लाए हैं चौपाइयाँ।

चलिए श्रोताओं, जाने से पहले अली सेंट्रल एक्ट्रेस बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। वक्वा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है ओलीवुड गुड कैस कौतों के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को, वैसे गुड कैस कौतों निमोड गुट देवैग्यू गुट लामारी गुट बेगू गुट बनफें शुमें रिजर्वा दूधी लेन शुमें लासोस मुत्तू लेन और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 26 जुलाई 2026 को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओ, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाली है और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। तो चलिए श्रोताओ, साथ निभाने के लिए सुबह 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा। धन्यवाद। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।

0: सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। सुमायरा अकबर अली से आपको नमस्कार।
1: नमस्कार आदाब। सिंगापुर कॉरपोरेशन एंटरप्राइज के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट परियोजना विकास कर रही है। एक मौजूदा प्रोटोकॉल संधि के संदर्भ में एक सलाहकार क्वालिटी इंश्योरेंस सेवाएं देंगे और तकनीकी सहायता भी देंगे ताकि इस नई प्रणाली को अमल में लाया जा सके, जैसे कि बजट 2026-2027 में ऐलान किया गया था। अधिकारी सरहदों के लिए एक डिजिटल संचालन प्रणाली को विकसित करना चाहते हैं। मकसद सुरक्षा को मजबूत करना और हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को सुविधा देना। 30 बिलियन रुपए की लागत पेट्रोली ठेके के सिलसिले में पुराने प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और मनीष गोबिंद को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का फिर से सामना करना पड़ेगा। सन 2023 में मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को दिए कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये एक बड़ा चरण होगा। पूर्व सरकारी नेता को जांचकर्ताओं को ठेका देने की सभी परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। अभी तक कोई तारीख तय नहीं है क्योंकि उनके वकील रऊफ गुलबुल व्यस्त हैं। सचिव त्रियोली में खुफिया कार्रवाई के दौरान एक पुलिस को ड्रग तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। वो विप्सू में काम करता था और उसकी उम्र 33 साल की है। उसके साथ ही 20 वर्षीय व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों एक ही इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हिरासत में कोकीन के 350 ग्राम पाए गए। कुल कीमत 5 मिलियन रुपये से ज़्यादा की बताई जा रही है। इसके अलावा

0: मर्चेंट रुपए और विदेशी मुद्राएं भी जब्त की गई। गोजबेल की आजसू ने ये कार्रवाई चलाई। विदेश में पेरू की राजधानी लीमा में घर में आग भर की एक ही परिवार के 10 सदस्यों की मौत हुई, जिनमें 5 बच्चे शामिल थे, 2 लोग घायल हुए। अभी वहां की स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की ताकि इस आग की वजह मालूम की जा सके। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
2: शम्मे फरोजा।

0: आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदा हो कुछ इस तरह से तेरे नाम के साथ या अल्लाह, इब्तिदा हो कुछ इस तरह से तेरे नाम के साथ या अल्लाह, के दिन गुज़र जाए तेरी रहमतों के नज़ूल में, के दिन गुज़र जाए तेरी रहमतों के नज़ूल में। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समाअत फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में आप समाअत फरमाएंगे तिलावते क़ुरान पाक, हम्द, नातु सलाम और आपके पैगामात। 5251-7005 के ज़रिए आप हमें अपने पैगामात भेज सकते हैं। अगर रूह बीमार हो तो क़ुरान पाक से बेहतर कोई दवा नहीं। तो आइए आगाज़ करते हैं क़ुरान पाक की तिलावत से। आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

मोहतरम सामीन, अपने गुनाहों को कबूल करना, तस्लीम करना भी एक मोमिन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। पाक परवरदिगार हमें कसरत से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं। जुमेरात का दिन है और जुलाई की आज 23 तारीख है। जी हाँ, जुलाई की 23 तारीख है और इस्लामी साल के दूसरे महीने माहे सफ़र की आज 8 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। आइए समात फरमाइए एक ऐलान। सनीचर 25 जुलाई सुबह 10 बजे शान रसूल मस्जिद लागी लॉज पोर्टलुइस में आलिमा सैयदा उनाजा फातिमा की सरपरस्ती में 11वीं शरीफ के ख़ास प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जब मैं किसी ईमान वाले बंदे या बंदी के किसी प्यारे को उठा लूँ, फिर वो सवाब की उम्मीद में सब्र करे, तो मेरे पास उसके लिए जन्नत के सिवा कोई मुआवजा नहीं। बहवाला सही बुखारी शरीफ। फरमाया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स ने किसी मुसीबत ज़दा की ताज़ियत की, तो उसको उतना ही अजर मिलेगा जितना उस मुसीबत ज़दा को मिलता है। बहवाला इब्ने माजा शरीफ।

हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जनाजे को तेज़ ले जाया करो, अगर वो नेक है तो कब्र उसके लिए खैर है, यानी अच्छी मंजिल है जहाँ तुम तेज़ चल के उसे जल्द पहुँचा दोगे, और अगर उसके सिवा दूसरी सूरत है यानी जनाजा नेक का नहीं तो एक बराबर बोझ तुम्हारे कांधों पर है, तुम तेज़ चल के जल्दी उसको अपने कांधों से उतार दो। बहावाला सही बुखारी मुस्लिम शरीफ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग।
2: स्वर तरंग। संगीत प्रेमी श्रोतियानो नमस्कार, सुस्वागतम। मैं आशा करती का पंथी का हाथ मजे तहत एंड चुनी करी तहत ऑन MBC रेडियो रसिक 36 मिनटांच्या संगीतमय कार्यक्रम आहे तुम्हा सगळ्यांच्या मनोरंजनासाठी। रसिको नेहमीच प्रमाणे आमची साथ आपण नक्कीच द्या 2 वाजतापर्यंत। तर सिखो सुरुवात करूया आजचा आपला सरतरंग कार्यक्रम एका अप्रतिम गणेश गाण्याने।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

I'm all gonna mess it up.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 23 जुलाई, घड़ी मिला लीजिए दोपहर के 2:45 हो चुके हैं और यहाँ पर हम भी आ चुके हैं आपकी पसंद इस प्रोग्राम को लेकर। सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। तो चले, गुरुवार का दिन है, उम्मीद करते हैं दिन अच्छे से बीत रहा होगा। ऐसे आज मौसम भी काफ़ी सुहाना है, मतलब कि ठंड तो मानो बिल्कुल नहीं है और हल्की हल्की गर्मी भी है और मौसम जब सुहाना होता है ना तो मन भी अपने आप में अच्छा लगता है, मन को अच्छा लगता है, चारों ओर मानो खुशी का माहौल छाया हुआ है। तो चलिए इस खुशियों को हम और बढ़ाएंगे आपके पसंदीदा गाने आपके लिए चलाकर। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। यहाँ पर हमारे आते आते ही आपके मैसेजेस और आपके फ़ोन कॉल्स पहले ही से आने शुरू हो जाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार के लिए, इतने विश्वास के लिए, इतने अपनेपन के लिए। तो चलिए, 4028085 है नंबर हमारा, साथ ही 5251700005 पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं और इस खूबसूरत गाने के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं।

0: आपकी पसंद।
1: हम तो ये कहेंगे कि ये गाने हमारी ज़िंदगी है, इसलिए तो जब भी इन गानों को सुनते हैं मानो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं और सारी परेशानियाँ अपने आप दूर हो जाती हैं। चले देखते ही देखते 2:52 हो चुके हैं और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। जाने चले जाते हैं कहाँ, ये जो गाना है यहाँ पर इस गाने की फरमाइश आई है माला जरी जी की ओर से। वो अपने भाई को याद करते हुए इस गाने की फरमाइश उन्होंने की है। यकीनन अपने जो है जीवन से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें हमेशा रहती हैं, तो चलिए इन्हीं यादों के सहारे कभी कभार पूरी ज़िंदगी कट जाती है। तो ये गाना माला जी आपके नाम, पूरे जरी परिवार के नाम और ख़ासकर आपके भाई को आप याद कर रही है तो उनको बारे में सोचते हुए भी।

की पसंद। और चलिए इस खूबसूरत गाने के साथ हम नाम जोड़ेंगे संगीता जी का, जो कथकोको से हमारे साथ जुड़ी है। गाना जाता है इनकी ओर से उनके पति विजय के नाम, साथ में यशवीर है, इश्नेशा है, काजल है, मिथुन है, आरुषि, आरोही, सभी पाताओ परिवार और सभी रीगा परिवारों के नाम। और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 3 बज रहे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता, आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में हम सभी लोगों का स्वागत है। सेंचुरी में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय निवासी कई वर्षों से अपनी चिंता जता रहे हैं। इसी मुद्दे पर पिछले शुक्रवार संसद के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। सोमवार से इस मार्ग पर एक अतिरिक्त बस सेवा शुरू की गई है। हालांकि NLTA की निगरानी और जांच के बावजूद यात्रियों का कहना है कि बसों की आवाजाही अब भी पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि बसों की कमी के कारण उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रही है। सेंचुबे के अलावा शोनो और बुविलाश जैसे आसपास के गांवों के निवासी भी इस समस्या से प्रभावित हैं। अनुमान है कि इस परिवहन संकट का असर लगभग 3,000 लोगों पर पड़ रहा है। प्रसिद्ध भारतीय गायक अभिजीत भट्टाचार्य शनिवार को स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में अपना कंसर्ट देने वाले हैं। वे आज सुबह अपने संगीतकारों की टोली के साथ मॉरिशस पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने मॉरिशस लौटकर खुशी व्यक्त की। बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय आवाजों में शुमार अभिजीत भट्टाचार्य ने अपने लंबे संगीत सफर में हजारों गीत गाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से अभिनेता शाहरुख खान के लिए अनेक सुपरहिट गीतों को अपनी आवाज दी है, जिससे दोनों की जोड़ी 1990 और 2000 की दशक की सबसे चर्चित अभिनेता गायक जोड़ियों में शामिल हो गई। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, तौबा तुम्हारे ये इशारे और ओले ओले जैसे उनके लोकप्रिय गीत आज भी श्रोताओं के बीच बेहद पसंद किए जाते हैं। शनिवार के इस कंसर्ट में दर्शकों को यादगार गीतों और भावनाओं से भरपूर एक शानदार संगीतमय शाम का अनुभव मिलने की उम्मीद है। आजसू मेट्रो नॉर्थ के ने 22 जुलाई की सुबह प्रनवेत में एक घर की तलाशी के दौरान 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी पेशे से बैंकिंग टेलर बताया गया है। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने मेथाडोन से भरी 4 प्लास्टिक की बोतलें, 7 मिलीग्राम की 42 लिरिका कैप्सूल, 75 मिलीग्राम की 30 गबलाइन कैप्सूल, 100 मिलीग्राम की 11 ट्राम कैप्सूल, 10 मिलीग्राम की 8 वैल्यूम कैप्सूल और 125 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार ये राशि मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त होने का संदेह है। गिरफ्तार व्यक्ति को पोर्टविस नॉर्थ जिला अदालत में पेश किया गया, जहां उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। अन्य खबरों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में जून महीने की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने न केवल तापमान के नए रिकॉर्ड बनाए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर डाला है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भीषण गर्मी के कारण लगभग 2.4 करोड़ कामकाजी घंटे प्रभावित हुए, जिससे करीब 1.15 बिलियन पाउंड के आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार 22 जून वाले सप्ताह में गर्मी के कारण सर्वे में शामिल 3.6% लोगों यानी लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों ने एक दिन काम नहीं किया। सबसे अधिक प्रभावित वे क्षेत्र रहे जहां काम बाहर खुले में करना पड़ता है, जिनमें निर्माण, परिवहन और कृषि क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
0: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 3:03 हो रहे हैं। समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से एक विज्ञप्ति।

0: तीस सुन लीजिए। सीबी सैंकवा के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सैंकवा के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रुई मारियामेम टेम्पल, देबुशे, लातानिए, लाप्रेरी, कानाल बाथरस्ट, हिगिनसन, ओपोंतेया, आले प्यालावाल, उदिन लेन, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 25 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे के बीच यहाँ पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी एक विज्ञप्ति सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
2: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
0: आपकी पसंद। चलिए आपकी पसंद इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हम करते हैं। मैं हूँ सुमी और यहाँ पर इस घंटे की शुरुआत हम करेंगे जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ। तो आज जितने भी सुनने वाले आपके परिवार के सदस्य अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमारी रेडियो मॉरिशस की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई। आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपनों का प्यार हो आपके जीवन में और जितने भी आपके सपने हैं, जितने भी आपके अरमा हैं, सभी के सभी पूरे हो जाए। चलिए यहाँ पर खास बेस्ट विशेस सरिता जी आपको हैप्पी बर्थडे, खासकर एमबीसी कैंटीन की पूरी स्टाफ की ओर से बेस्ट विशेस, खासकर भाई विशाल और भाभी रीना की ओर से, साथ में रीता, प्रिया, बबीता, स्वस्ति सभी ने आपको हैप्पी बर्थडे कहा है। दो चाचियों की ओर से भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, खासकर आपके पति राजेश की ओर से और साथ में है मधु, शिवम, करिश्मा, योगेश, विमल, हेश्वी जो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और चलिए जितने भी सुनने वाले आज अपना बर्थडे मना रहे हैं, ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के नाम।

श्री जन्मदिन का मौका अपने आप में बहुत ही खास होता है, तो इस खास मौके में अपने जब जुड़ जाते हैं तो जन्मदिन की खुशियाँ और भी बढ़ जाती हैं। तो चलिए एक बार फिर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं जो भी आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और चलिए गानों का ये जो कारवा है इसे हम आगे ले जाते हैं, और इस समय जो है हमारे साथ मानिता जी जुड़ी हुई है। आशा करते हैं आप ठीक होंगे। हम बिल्कुल ठीक है, और अगला गाना जो है आ जाता है आपकी प्यारी मामा सुमंती के नाम, जो सेंट जूलिया विलाज से हमारे साथ जुड़ी हुई है। साथ में यही गाना आरती सचिता बबीता रेखा भाभी उषा भाई सत्यम के नाम, और पूरे परिवार के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। आप हमारा साथ दे रही है इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यही गाना जाएगा सुदेवी जी आपके नाम वाकवा से, आप हमारा साथ दे रही है, प्रोग्राम को एंजॉय कर रही है। अगला गाना आपकी दीदी ललिता के लिए, सभी कुशल फैमिलीज़ के लिए। साथ में है दीदी सुनीता शोभा देवीना बिंदु लालोरा से, आपके पूरे परिवार जो हमारे साथ जुड़े हैं, दीदी माला है, जय श्री अंबिका, सभी जलू परिवार, सभी बिकारी परिवार, सभी राम रतन राम गुलाम और सभी रघुबर परिवार के नाम ये अगला तराना। और खासकर यही गाना जो है आपके लिए भी हम करते हैं सुदेवी जी, हमेशा जो है हमारे साथ ग्रांगुप से सुनीता जी भी साथ देती हैं, तो आपको भी हम नहीं भूले हैं सुनीता जी। अगला गाना आपके नाम और आपकी विमला के नाम और आपके पूरे परिवार, आपकी बहन विमला के नाम और पूरे परिवार के नाम भी हम चलाते हैं।

0: चलिए अपनापन फिल्म का ये खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे लता जी और रफी साहब की आवाजों में
1: आपकी पसंद
0: और आपकी पसंद इस प्रोग्राम में गानों का ये जो सिलसिला है फरमाइशी गीतों का सिलसिला इसे हम आगे ले जाते हैं। इस समय बंधु परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं थ्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं और अगला गाना जाता है आपके नाम आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए जो इस समय इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और यहाँ पर ज्योति जी जो हमेशा शातो बनारस से हमारा साथ देती है अगला गाना आपके नाम भी हम करते हैं यही गाना जाएगा आशनी रेखा सुरेखा सभी मधव परिवार के नाम और हमारे लिए भी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग गाने की फरमाइश करते हैं लेकिन कभी कभार अपना नाम नहीं लिखते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि गाने की रिक्वेस्ट आई है तो किसकी ओर से आई है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप मैसेज करें तो आप अपना नाम भी लिखें तो हमें पता चले कि गाना जो है किसने रिक्वेस्ट किया है। तो चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला गाना जो है साजन का घर फिल्म का तराना होगा अलका याग्निक कुमार सानू जी की आवाज़ों में।

0: आपकी पसंद।
1: जी हाँ, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। कहते हैं ना कि जिस भी चीज़ पर विश्वास होता है, जिस भी चीज़ पर यकीन होता है, अगर उसके होने की गुंजाइश कम होती है, अगर हमारा यकीन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाता है, वो चीज़, वो इच्छा पूरी हो ही जाती है। तो बस जिस भी चीज़ को चाहते हैं, दिल से उसे चाहिए और अपनी उस चाहत में ईमानदारी हो, सच्चाई हो, और फिर कुछ नहीं है जो आपको रोक सकता है उस चीज़ को पाने से। तो चले अभी के लिए अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे, अगले तराने की ओर हम बढ़ेंगे। बौशेरी से इरावती जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और कहती है कि अगर हो सके तो रूना लैला जी की आवाज़ में कोई तराना हो जाए। तो जो गाना आपने कहा था, हमने तो कहा ही कि शायद पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो एक जो दूसरा खूबसूरत सा तराना है रूना लैला जी और भूपिंदर जी की आवाज़ों में है। आपके नाम हम करते हैं इरावती जी, सभी मुनोवा परिवारों के लिए। और इस समय ज्योति जी यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही हैं, यही गाना आपके लिए भी जाता है। और प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्टा, आप सभी के लिए भी। तो चले चल पड़ा ये खूबसूरत सा गीत।
2: दीवाना,
3: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
3: दो दीवाने शहर में।

आपकी पसंद। चलिए यहाँ पर दीवानगी को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ेंगे इस अगले तराने की ओर। यहाँ पर आपकी पसंद टीम को हेलो, थैंक यू सो मच। हेलो आपको भी, आपकी कज़िन नाइला का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नाइला, आपको बेस्ट विशेस, ढेर सारा प्यार, पीस, गुड हेल्थ। खास बेस्ट विशेस आई है नसरीन की ओर से, वाकवा से, और पूरे फैमिली की ओर से हैप्पी बर्थडे नाइला आपको। और यहाँ पर अगला गाना जो है जाता है यहाँ पर पूरे फैमिली के नाम, और ये है शहनाज जो वाकवा से हमारे साथ जुड़ी हुई है, और अपनी माँ को याद करते हुए इन्होंने इस अगले खूबसूरत गाने की फरमाइश की है। तो चलिए उन सभी के नाम ये गाना, कभी खुशी कभी गम फिल्म का टाइटल ट्रैक।

यही गाना रिहाना जी आपके नाम भी फिनिक्स से हमेशा हमारा साथ देती हैं। यही गाना देवी जी आपके लिए भी, आप भी हमें पता है हमारे साथ जुड़ी है और गानों का मजा उठा रही है। और आफिस जी भी बड़े प्यार से हमेशा हमें सुनती है, मौका मिलता है तो फोन भी करती है, तो यही गाना आपके नाम भी आफिस जी हम करते हैं।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: कभी सोचा है
2: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
2: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती।

0: गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
1: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
0: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
1: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
0: और आपका चांस।
1: डोंट मिस इट।
2: आपकी पसंद। चलिए यहाँ पर देखते ही देखते 4:15 बजने को है और बारी है इस अगले खूबसूरत गाने की। ऐसे अभी स्कूल की छुट्टियाँ हैं तो बहुत सारे बच्चे जब घर पे हैं तो दादा दादी नाना नानी जो है उनका बहुत ही अच्छा समय बीत रहा है अपने नाती पोतों के साथ। ऐसे में अगले जो गाने की फरमाइश आई है सभी परिवार के नाम आई है। साधना जी रिवेदे क्रेओल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। खासकर गाना जाता है उनके पति देवानंद के नाम और उनके सभी बच्चों के लिए। नीतीश, कुशल, करण, बेटियाँ है अनुषा, मनीषा, बहू है कविना, साथ में है संहिता, नातिन है जिया, तेजल नाती है गौरव, क्रियान और सबसे छोटा लड्डू गोपाल, तश्विक के नाम, सभी जीवन परिवार के नाम जो इस समय रिवेदे क्रियोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर साथ देते रहिए हमारा और ये खूबसूरत सा तराना आपके नाम बिल्कुल हम करते हैं और उन सभी के नाम जिन्हें लगान फिल्म का ये गाना पसंद है, ओ पालनहारे, ये गाना चल पड़ा।

आपकी पसंद। और चलिए अब बारी है सुर फिल्म के इस अगले तराने की, और ये जो गाना है माहिन जी की ओर से इस गाने की फरमाइश आई है। महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाज़ों में सुर फिल्म का ये जो गाना है, माहिन जी आपके नाम हम करते हैं, सभी जगमोहन परिवारों के नाम इस गाने को हम करते हैं। विद्या जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार भरे साथ के लिए। तो यही गाना आपके नाम भी हम करते हैं, और यहाँ पर विश्वानी दुमन जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है। यही गाना आपकी ओर से आपकी बहनों के लिए, शारदा है, इंदिरा है, नीला है, प्रतिभा, शोभा है, गीता गजाधर है, और पूरे दुमन परिवारों के नाम। और ये जो गाना है इसी के साथ जो है यहाँ पर ये गाना किशन जी आपके लिए भी हम करेंगे। आपकी ओर से आपके सभी दोस्तों के लिए

तो श्रोताओं, इसी गाने के साथ जो है आपकी पसंद यह प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। आपने साथ दिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4 बजे आप सुन पाएंगे भक्ति सागर इस कार्यक्रम को, तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए रेडियो मॉरिशस पर।

गुरुवार 23 जुलाई घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। रेडियो मॉरिशस पर पुनः हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। सुमिता की ओर से सादर वंदन स्वीकार करें। भक्ति सागर इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर हम आपके साथ साथ हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम जुड़े हुए हैं और अभी से लेकर जो है शाम के 5 बजे तक भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम चलने वाला है। तो चलिए आपको बता दें कि इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी, डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। अभी के लिए भगवान गणेश का नाम लेते हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ हम करते हैं, ताकि भगवान गणेश जो है हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें और हमारे जीवन को सुखी बनाए, जीवन को सुंदर बनाए। और जीवन में जो है अगर कोई कठिनाई है, कोई परेशानी है, तो उसका सामना करने का जो है साहस हमें प्रदान करें।

0: श्रोताओं, गणेश वंदना के साथ हमने कार्यक्रम का आरंभ किया और अब चलिए हम डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में सुनेंगे कार्यक्रम पीयूष धारा। तो आइए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की ओर।
1: तारा डॉक्टर शांति महावीर की प्रस्तुति में सुनिए भक्ति एवं आध्यात्मिकता पर आधारित कार्यक्रम पीयूष धारा।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य की कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रुताओं, ताड़का का वध करने के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम की ओर लेकर चल पड़ते हैं। यह आश्रम हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ, पशु पक्षियों से युक्त सुंदर और मनोहर आश्रम था। यहाँ पर श्रेष्ठ तपस्वी वास करते थे और बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करते थे। आश्रम के पास पहुंचकर महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो हयत्र महातपा। कि हे राम, पहले इस पुण्य आश्रम में महात्मा वामन तप करते थे। अन्य श्रेष्ठ तपस्वियों की भांति उनकी भी तपस्या यहीं पर सिद्ध हुई, इसी कारण यह आश्रम सिद्धाश्रम नाम से लोकप्रिय है। मैं यहाँ के उच्च श्रेणी के तपस्वियों और महात्मा वामन से अत्यंत ही प्रभावित हूँ, इसीलिए इसी आश्रम में वास करता हूँ और यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ। इसी आश्रम में मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस अपने साथियों के साथ आतंक मचाते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते हैं। हे राम, राक्षसों का लक्ष्य ही है अच्छे कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, परंतु क्षत्रियों का कर्तव्य है अच्छे कार्यों की रक्षा करना, यज्ञों की रक्षा करना। तुम्हें इन राक्षसों को मारकर सिद्धाश्रम को इनके आतंक से सदा के लिए मुक्त करना है। श्रोताओं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र को श्रीराम और लक्ष्मण के साथ आते देख आश्रमवासी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उन्हें आश्वासन हो जाता है कि अब उनके दुखों का अंत होने वाला है। वे तीनों जनों का आतिथ्य सत्कार करते हैं। थोड़ी ही देर विश्राम करके श्रीराम महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि अद्यैव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनि पुंगव सिद्धाश्रमो अयम सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। कि हे ऋषिवर, अब हमें तनिक भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं और लक्ष्मण यज्ञ की रक्षा के लिए एकदम तैयार हैं। आप तुरंत यज्ञ आरंभ कीजिए। इस आश्रम का नाम साकार करने के लिए आपके यज्ञ को सिद्ध करना आवश्यक है। श्रोताओं, श्री राम के मुख से यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी

पूर्णतया आश्वस्त होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारी करते हैं। दोनों राजकुमार सावधान होकर, बहुत ही सतर्क होकर रात बिताते हैं। प्रातः उठकर स्नान और आचमन करते हैं और संध्या के बाद गायत्री जाप करके ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि महर्षि विश्वामित्र 6 दिनों के लिए यज्ञ की दीक्षा लेते हैं और 6 दिनों तक वे मौन रहने का संकल्प लेते हैं। मौन व्रतधारी बनकर वे पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर अपने यज्ञ की सिद्धि में लीन हो जाते हैं। इधर दोनों राजकुमार पूर्ण सतर्कता बरतते हुए सिद्धाश्रम की रक्षा करने लगते हैं। 5 दिन निर्विघ्न रूप से विश्वामित्र जी यज्ञ संपन्न करने में सक्षम होते हैं, परंतु 6ठे दिन एकाएक मारीच और सुबाहु अपने राक्षस साथियों के साथ आकर यज्ञ वेदी पर उपद्रव मचाने का प्रयास करने लग जाते हैं। भयंकर राक्षसों को यज्ञ में विघ्न डालते देख श्रीराम उनका वध करने के लिए तुरंत दिव्यास्त्र साधते हैं। मारीच अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़ा होता है, परंतु सुबाहु और अन्य राक्षस दिव्यास्त्रों के प्रभाव से नहीं बच पाते हैं और भूमि पर गिरकर मर जाते हैं। इस प्रकार श्रोताओं, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सिद्ध हो जाता है और उनकी ली हुई दीक्षा सफल हो जाती है। श्रोताओं, भारत यज्ञीय भूमि है। भारतवर्ष श्रेष्ठ कर्मों का देश है, इसीलिए इसे आर्यावर्त भी कहा जाता है। इस देश में यज्ञों से संबंधित कार्य होते हैं। जितने भी पवित्र, दिव्य और श्रेष्ठ कार्य हैं, वे सब इसी देश में संपन्न होते हैं और इस बात का प्रमाण मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति दोनों में ही उपलब्ध है। आर्यावर्त में अश्वमेध, नरमेध, गोमेध जैसे विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान सृष्टि के आरंभ से होता आया है। सबसे बड़ा यज्ञ तो स्वयं परमात्मा ने रचा है। यह सृष्टि उस परमात्मा का सर्वोत्तम यज्ञ है। श्री कृष्ण जी महाराज यज्ञ की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि चाहे मनुष्य हो या दानव, सभी को पुण्य कमाने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। यज्ञ हमें कर्मशील बनाता है, हमारे पापों को मारता है। अंदर के दानवों का और बाहर के राक्षसों का यज्ञ द्वारा ही संहार होता है। यज्ञ सबसे बड़ा आश्रय है। आत्मा का उत्कर्ष चाहने वाला व्यक्ति यज्ञ करता है। जो यजमान यज्ञ की दीक्षा लेते हैं, उन्हें यज्ञ की रक्षा की व्यवस्था करना अनिवार्य होता है। महाभारत काल में यज्ञ के रक्षक योग्य पुरुष हुआ करते थे। महायुद्ध के बाद श्री कृष्ण और महर्षि व्यास के परामर्श से धर्मात्मा युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए तत्पर होते हैं। महर्षि व्यास युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, भीमसेनो अपि तेजस्वी कौन्तेयो अमित विक्रमः समर्थो रक्षितुम राष्ट्रम नकुलश्च विशाम्पते। महर्षि व्यास युधिष्ठिर को यज्ञ की रक्षा की रीति समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपका भाई अर्जुन धनुर्धारियों में श्रेष्ठ हैं, सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, इंद्रियों को जीत लेने वाले तपस्वी हैं। यज्ञ की दीक्षा लेने से पहले आप अर्जुन को यज्ञ की रक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दीजिए और स्मरण

स्मरण रहे कि जब आप यज्ञ की दीक्षा लेकर यज्ञ के अनुष्ठान में मग्न होंगे, उस समय राज्य के और परिवार के कार्य भी सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। भीमसेन तेजस्वी हैं, अमित पराक्रमी हैं, नकुल भी गुणी हैं। भीम और नकुल राज्य कार्य में कुशल हैं, इसलिए आप राज्य की रक्षा का भार इन दोनों को सुपुर्द कर दीजिए। आपका भाई सहदेव महायशस्वी और बुद्धिमान है। यज्ञ में कोई बाधा न आए, इसलिए परिवार की रक्षा सर्वोपरि है। आप परिवार का समस्त सुरक्षा भार सहदेव को सौंप दीजिए। श्रोता भाई बहनों, युधिष्ठिर महाराज को अपने सभी भाइयों की सहायता लेनी पड़ी थी, तभी उनका यज्ञ सिद्ध हो पाया था। इसी प्रकार श्री राम और लक्ष्मण 6 दिनों तक विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते रहे, तभी उनका यज्ञ निर्विघ्न रूप से सिद्ध हो पाता है। विश्वामित्र जी के यज्ञ की सफलता के बाद रामायण की कथा कैसे आगे बढ़ती है, यह हम अगले सप्ताह देखेंगे। तब तक के लिए अंजू और मुझे आप अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, कहते हैं कि जीवन में जो है, जो कुछ हो रहा है, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, बुरा, भला, जो भी है, जैसे भी अनुभव हमें जीवन में होते हैं, खुशी के, गम के, दुख के, सुख के, जिन लोगों से हम मिलते हैं, कभी कभार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं जो काफ़ी मुँहफट होते हैं, यानी कि दिल में जो भी बात होती है बेझिझक कह देते हैं। कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें कड़वी होती है, जो हमें चुभती है। कभी कभार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख से सदा अच्छी वाणी निकलती है। तो जीवन में जितने प्रकार के लोग हैं, उतने प्रकार के अनुभव हमें मिलते हैं, और इन सभी अनुभवों के द्वारा हम अपने जीवन को और भी बेहतर कर सकते हैं और भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं उसी से तो हम सीखते हैं, है ना।

ईश्वर की शरण में हर कोई जाना चाहता है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन जितना धैर्य, जितनी मन की शांति, जितनी मन की स्थिरता की आवश्यकता होती है, पहले हमें उसे प्राप्त करना होता है। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है, जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होता है, तब तक हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। जब ध्यान नहीं कर पाते हैं तो मन से ईश्वर को याद नहीं कर पाते हैं, ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो बस ईश्वर तक पहुँचना है तो ध्यान करना है, जप करना है, तप करना है, तब जाकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और जब ईश्वर तक पहुंच गए तो फिर ईश्वर को कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है ना, क्योंकि ईश्वर तो बिना कहे ही अपने भक्तों की हर एक बात, हर एक पुकार, हर एक आस को सुन लेते हैं।

इसलिए भगवान श्री हरि भगवान श्री विष्णु को शत शत नमन करते हुए हम कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। और कहते हैं ना कि ईश्वर का नाम सदा हमारे मुख में होना चाहिए। हम चाहे किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हो, कुछ अच्छा करने जा रहे हो या कोई शुभ कार्य करने जा रहे हो, तभी ही हमें ईश्वर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। या जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो तब हम भगवान को याद करते हैं, नहीं। भगवान का नाम तो श्वास की तरह हमारे हर श्वास पर होना चाहिए और भगवान से कहना भी चाहिए कि भगवान हमारे हर श्वास पर हमारे हर पग पर उनका आशीर्वाद बना रहे।

जी हाँ, जीवन में कभी कभार कुछ बिगड़ जाता है तो संवारने वाला वही है, बस विश्वास होने की आवश्यकता है। और बस इसी विश्वास के साथ आप भी हमेशा हमारा साथ देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और भक्ति सागर, इस कार्यक्रम में आप जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस अंतिम आरती के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करने जा रहे हैं। जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर की कृपा जो है आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और इस अंतिम आरती के साथ कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। 5 बजे से आप सुन पाएंगे सदाबहार गीतों का प्रोग्राम, तो जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर। गुरुवार 23 जुलाई और यहाँ से शुरुआत होती है सदाबहार गीतों के प्रोग्राम की। ऐसे तो आप दोपहर से ही हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से आपका स्वागत हम करते हैं। सदाबहार गीतों का ये प्रोग्राम यहाँ से शुरू होता है, चलेगा शाम के 6 बजे तक। तो चलिए, यहाँ पर पुराने गाने सुनना आपको अच्छा लगता है तो जुड़ जाइए सदाबहार गीतों के इस सफ़र में। कुछ खूबसूरत सिलेक्शन आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, और हमें पता है कि हमारे रेडियो मॉरिशस के जितने भी होता है वो पुराने गाने बड़े सुनना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की वासना फिल्म के इस गीत के साथ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

और चलिए एक और सदाबहार गाना जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है, वक्त फिल्म से लिया गया। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस इसी पल में है। और ज़िंदगी को जीने का जो जज्बा है वो भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी है बस इसी पल में है।

रुक जा ए हवा, थम जा ए बहार। शागिर फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत सा गीत अभी आप सुन रहे थे। काश कि हम अपने ज़िंदगी के उन हसीन लम्हों को रोक पाते, काश कि उन पलों को हम रोक पाते जिन्होंने, जिसमें हमें खुशी मिली है, जिसमें हमें संतुष्टि मिली है, जिसमें हमें समाधान मिला है। लेकिन समय जो होता है ना, किसी के लिए रुकता नहीं है। बस एक बार बीत गया तो बीत

गया और बस यादें बनकर फिर हमारे जहन में रहता है। और ये गाने भी हमारी यादों का हिस्सा हैं, हमारे जीवन का हिस्सा है। तो चलिए ऐसे में पढ़ेंगे हम इस अगले तराने की ओर। अगला जो गाना है, अगला जो तराना है, पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत होगा मुकेश साहब की आवाज़ में।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, यार की खबर मिल गई। खूबसूरत सा तराना राम बलराम फिल्म से लिया गया। और अभी के लिए चलिए, हमारे बहुत सारे सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वानी दुमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। गाने आपको पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए, ये जो पल है, ये ऐसा टाइम होता है कि दिन भर जो है थक जाते हैं हम। ये टाइम होता है काम काज से लौट कर घर पर शायद थोड़ा आराम कर रहे होते हैं या फिर शाम के डिनर की तैयारी कर रहे होते हैं। और अभी तो छुट्टियों का वक्त है तो बच्चे भी घर पर है, तो ऐसे में जो है ये खुशी और भी बढ़ जाती है ना। तो चलिए, आपकी इस खुशी को और बढ़ाते हैं अगले गाने के ज़रिए। और अगला गाना जो है आप सबके नाम हम करते हैं। और खूबसूरत गीतों का ये जो सिलसिला है चलने वाला है 6 बजे तक। सदाबहार गीत ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर। कब शुरू ये सफ़र हुआ और कब ख़त्म होने को चला पता ही नहीं चला है ना। तो चलिए, इस प्यार भरे साथ सफ़र में आपका साथ हमें मिला, इसके लिए धन्यवाद। उमा जी इस समय क्यूपिप से हमारा साथ दे रही है। नाइस सिलेक्शन, थैंक यू सो मच उमा जी। और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम आज के इस आखिरी गाने की ओर, और इसी गाने के साथ हम भी आपसे विदा लेंगे। उम्मीद करते हैं रेडियो मॉरिशस पर ये जो समय है बहुत अच्छे से बीता होगा, और बाकी की जो शाम है वो भी बहुत अच्छे से बीते। तो बस ऐसे ही गानों को गुनगुनाते रहिए और ज़िंदगी के इस सफ़र को खुशनुमा बनाते रहिए। 6 बजे जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को और शुभ संध्या।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिलाते चलिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। जुलाई गुरुवार का दिन, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के

0: प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। उद्देश्य 2050 तक 2000 बिलियन मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। एमओयू के कस्टम्स विभाग के कार्यों का जायजा लेने, सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईएमएफ की एक टीम इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। प्रतिनिधियों ने आज प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब बस कुछ ही दिन दूर है। शनिवार को भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल जीतने आए हैं। कलाकार आज सुबह मॉरिशस पहुंचे। अमेरिका और सऊदी अरेबिया ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत सऊदी अरेबिया अपने नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेगा। इस समझौते से अमेरिकी कंपनियों को भी सऊदी के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के असम में बाढ़ का संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब तक 50 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 16 जिलों में 8 लाख से अधिक लोग इस आपदा से प्रभावित हुए। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। गवर्नमेंट हाउस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले दिन जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा। और मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के कस्टम्स विभाग के कार्यों का जायजा लेने, सुधार की जरूरत वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उसे और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आईएमएफ की एक टीम इन दिनों मॉरिशस के दौरे पर है। इस टीम ने आज ट्रेजरी बिल्डिंग में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम से रस्मी मुलाकात की। इस मुलाकात में एमओए के डायरेक्टर जनरल भी मौजूद थे। सिंसा मुत्तू, अदिति अवतार।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक प्रतिनिधि मंडल मॉरिशस आया हुआ है। मकसद है देश में टैक्स प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए जाने वाले बेहतरीन तरीकों के मुकाबले इसकी परिपक्वता की स्तर का आकलन करना। ऑगस्टो अजाएल पेरेज आस्कागा, स्टेफेन मेंडेस, आल्दो सिल्वानो और ऑस्कर अल्बर्टो नियेतो मोरा मॉरिशस के दौरे पर आए हुए हैं। उन्होंने आज मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी के महानिदेशक रोहित रामनवास की उपस्थिति में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम के साथ भेंट की। एमओए के महानिदेशक ने कहा, ट्रेड फैसिलिटेशन से जुड़े खतरे पाटने के लिए और दूसरी तरफ देश में अवैध सामानों का प्रवेश रोकने के लिए वे हमारे टैक्स क्षेत्र को ज्यादा मजबूत बनाने में हमारी सहायता करेंगे। साथ ही कस्टम्स की कारगरता बेहतर करने में मदद मिलेगी। जब आयातक या निर्यातक कंटेनर मंगवाते हैं तो वे जल्द से जल्द उसे प्राप्त करना चाहते हैं। हम ऑपरेशन खर्च भी कम करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष की क्षमताएं बढ़ाने के लिए भी काम किया जाएगा। टैक्स अधिकारियों द्वारा इस मूल्यांकन के बाद एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके साथ मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी की कार्य क्षमता बेहतर करने के लिए सहायक उपाय भी शामिल होंगे।
0: जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सरकार की विजन 2050 परियोजना ने आज एक और महत्वपूर्ण चरण पार किया। गवर्नमेंट हाउस में देश के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में इस योजना के मुख्य निष्कर्षों को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य 2050 तक मॉरिशस को 50 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 2000 मॉरिशन रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना है। अब्दुल बोला की याचना मिश्रा।
2: विजन 2050 पर 6 महीनों के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के बाद अब आने वाले दशकों के विकास को आगे बढ़ाने वाली प्रमुख रणनीतियों को अंतिम रूप देने का समय आ गया है।
3: Between now and 2050, we will be losing 180,000 Mauritians to aging, which we will not.
2: 23 जुलाई को सहरी लाल बागजी हॉल में आयोजित बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों, आर्थिक क्षेत्र के संचालकों, शिक्षाविदों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को मुख्य निष्कर्षों पर जानकारियां दी गईं। प्राथमिकताओं में

0: नशा और अपराध मुक्त समाज का निर्माण, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना, आधुनिक ढांचों का निर्माण, अच्छी नौकरी पैदा करना, रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर तेजी से बदलाव, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुदृढ़ बनाना तथा अधिक लचीली नवाचार आधारित और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था का निर्माण शामिल है।
1: $50 by $50
0: एक ऐसी अर्थनीति जो 2050 तक $50 बिलियन की होगी। इसके लिए काम करना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा और आश्वस्त करना होगा कि सभी इसमें भाग लें। वक्ताओं ने मॉरिशस के लिए ऐसी दीर्घकालिक और साझा राष्ट्रीय विजन के महत्व पर बात की, जिससे रणनीतिक बदलावों से परे जाकर आने वाली पीढ़ियों की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। हमें 2050 का मॉरिशस दिख रहा है, ये मार्ग प्रशस्त करता है। आशा है कि इसके लिए सरकार माध्यम और निवेश देगी। ये कार्रवाई पहले ही कर देनी चाहिए थी। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए ठोस वित्तीय स्थिति की जरूरत है। शिक्षा को भी पर्याप्त होना होगा ताकि चुनौतियों का सामना किया जा सके।
1: La sécurité alimentaire évidemment est un sujet très important.
0: खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है और देखना होगा कि भूमि का प्रयोग कैसे किया जाए।
1: De l'utilisation des terres à Maurice est très important qui tout à chacun dans nos populations de sentir belong to that vision.
0: सभी को इस विजन को अपनाना चाहिए, इसे अमल में भी लाया जाना चाहिए। वैलिडेशन चरण के बाद दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके बाद चरणों में इसे लागू किया जाएगा।
2: L'avenir se prépare. Si nous pas faire ça, comme aujourd'hui nous payer à banque crise.
0: भविष्य की तैयारी चल रही है। आज जल, बिजली, बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, पेंशन, सब प्रकार की चुनौतियां हैं, क्योंकि इसकी तैयारी या पूर्व योजना नहीं की गई थी। हम अपने बच्चों को ऐसा देश नहीं सौंप सकते हैं। इसी वास्ते विजन 2050 भले ही दूर दिखता हो, लेकिन तैयारी आज से ही शुरू है। विजन 2050 की तैयारी के तहत मॉरिशस और रोड्रिग्स में 13 परामर्श बैठकें लगाई गईं। इनमें अलग अलग क्षेत्रों से 1,500 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आर्थिक क्षेत्र की प्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, युवाओं, शिक्षाविदों तथा अन्य साझेदारों के साथ भी विचार विमर्श हुए। अधिकारियों के अनुसार ये प्रक्रिया आने वाले 25 सालों में मॉरिशस के सतत विकास और विजन 2050 का मजबूत आधार बनेगा।
3: लातुकेनिक के निवासी हवा की स्वच्छता को लेकर चिंतित हैं। हालांकि नेशनल एनवायरमेंटल लेबोरेटरी का कहना है कि जांच में हवा की किस्म सामान्य पाई गई है। 9 जुलाई को इलाके में फैली तेज गंदबास की एक फैक्ट्री में हैवी ऑयल के रिसाव के कारण थी। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार फैक्ट्री ने अब इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठा लिए हैं। सेंचुबेया में सार्वजनिक परिवहन की समस्या को लेकर स्थानीय लोग कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। पिछले गुरुवार इस मुद्दे पर राष्ट्रीय सभा के बाहर प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद सोमवार से इस रूट पर एक अतिरिक्त बस लगाई गई। NLTA ने भी इस मार्ग पर जांच की, लेकिन बस का इंतजार कर रहे यात्रियों का कहना है कि बस अब भी कम चल रही है। उनका कहना है कि इस समस्या का स्थाई समाधान निकाला जाए। और बात करें हम अन्य खबरों में, पाकिस्तान के मशहूर आमों की मिठास और खुशबू का रंग आज क्यूपिक में देखने को मिला। पाकिस्तान हाई कमीशन की पहल पर सिटी हॉल में मैंगो सागा के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोगों को पाकिस्तान की कई मशहूर किस्मों के आमों का स्वाद चखने का अवसर मिला। साथ ही मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को भी उजागर किया गया। देखते हैं ये रिपोर्ट, सुनते हैं ये रिपोर्ट।
4: मीठे और रसीले कई तरह से परोसे गए पाकिस्तानी आम

0: मोनी मेहमानों का दिल जीत लिया। जो लोग पहले पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं उनके लिए इनका स्वाद पुरानी सुखद यादें ताज़ा कर गया। नसरीन मियाजान कहती हैं, मैंने पाकिस्तान में 5 सालों तक पढ़ाई की थी। हम गर्मियों के दौरान वहाँ के आमों का आनंद लेते थे। इस गतिविधि से आज आम से जुड़ी मेरी यादें ताज़ा हो गई। मॉरिशस में ऐसे आम नहीं मिलते। इब्राहिम अलादीन कहते हैं, आम मेरा मनपसंद फल है। जब मुझे पता चला कि मैंगो फेस्टिवल लग रहा है तो मुझे यहाँ आना ही था। आम से लस्सी, आइसक्रीम आदि कई तरह की चीजें बनती हैं और पाकिस्तान अपने आमों के लिए मशहूर है। पाकिस्तानी रिवाजों और संस्कृति में आम का बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य रूप से सिंध और पंजाब क्षेत्रों में उगाए जाने वाले आमों की कई किस्में होती हैं।
1: हमारा जो मेन मकसद है वो ये कि पाकिस्तान और मॉरिशस की जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। और देर आर और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं, लेकिन मैंगो जो है एक ऐसा आइटम है जिसपे हम समझते हैं कि एक नई चीज़ हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मैंगोज़ की पाकिस्तान में, उनमें से इस टाइम जो हम देख आए हैं वो मैंगो चौंसा है और ये वाइट चौंसा कहलाता है। लेकिन ये कि जो मैंगो का सीज़न है वो 31 मई से 31 अगस्त तक है, तो उसमें बहुत सारी किस्में वैरायटीज़ आती रहती हैं। और अगले महीने में कुछ और वैरायटीज़ भी आएंगी, वी विल ब्रिंग देम एज वेल। हमारी कोशिश होगी कि हम इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो आउटलेट्स हैं यहाँ पे उनमें रखें। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे मॉरिशस दोस्त हैं वो इसको इंजॉय करेंगे।
2: जब हम अपने पाकिस्तानियों से मिलते हैं और हमारे एम्बेसडर अहमद रज़ा जब यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं सारे फेस्टिवल पाकिस्तानी, तो सेम लगता है जैसे एक छोटे से पाकिस्तान में आ गए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉरिशियन लोगों से भी, हमारे पाकिस्तानी सब जब कम्युनिटी मिलती है तो कोई उसमें मतलब ऐसा मिस नहीं होता है। सेम लगता है जैसे पाकिस्तान में हम इंजॉय करते थे हर इवेंट, सेम अब यहाँ पे भी ऐसा।
0: इस फल की खेती पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक अहम सेक्टर है। देश में हर साल 1.8 मिलियन टन से ज़्यादा आम का उत्पादन होता है, जिससे ये दुनिया के प्रमुख उत्पादक देशों में शामिल हैं। पुरानी यादें, नई खोज और सहयोग का मेल। मैंगो सागा के इस दूसरे संस्करण का मकसद है मॉरिशस और पाकिस्तान के बीच सहयोग का एक पुल कायम करना।
3: प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हिंदी स्पीकिंग यूनियन ने प्रेमचंद दिवस मनाया। इस अवसर पर वाकवा के सियाश कोंसौते थिएटर में मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना बूढ़ी काकी का मंचन किया गया। कार्यक्रम में प्रेमचंद के प्रशंसक, हिंदी प्रेमी तथा अनेक आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। मॉरिशस की पत्रकारिता जगत के लिए एक दुखद समाचार। वरिष्ठ पत्रकार नसीम अकबर अली का 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत वीकेंड स्कोप से की थी, जहां वे सांस्कृतिक विषयों और भारतीय सिनेमा पर अपनी रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते थे। बाद में उन्होंने लुमोसिया में कृषि क्षेत्र से जुड़े विषयों को पेशेवर अंदाज में कवर किया। उनके निधन से मॉरिशस की पत्रकारिता ने एक समर्पित और सम्मानित पत्रकार को खो दिया है। एमबीसी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके परिवार तथा सभी परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब बस कुछ ही दिन दूर है। इस शनिवार भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य SVICC के मंच पर अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल जीतने आ रहे हैं। कलाकार आज सुबह मॉरिशस पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर मॉरिशस लौटने की खुशी जाहिर की और इस पर हम अपने बुलेटिनों के अंतर्गत ज़्यादा जानकारी के साथ आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मना रहा है। ये दिन देश में संगठित रेडियो प्रसारण की शुरुआत की याद में मनाया जाता है। पिछले लगभग एक शताब्दी में प्रसारण ने लोगों तक समाचार, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज डिजिटल युग में भी इसकी प्रासंगिकता बरकरार है।
4: हर साल 23 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे, जिसे आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, से देश की पहली संगठित रेडियो प्रसारण सेवा

0: शुरू की थी। हालांकि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी कुछ वर्षों बाद बंद हो गई, लेकिन इसी पहल ने भारत में आधुनिक प्रसारण व्यवस्था की नींव रखी। वर्ष 1936 में इसकी जगह ओल्ड इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1957 में इसे हिंदी में आकाशवाणी नाम दिया गया। इसके बाद आकाशवाणी ने देश के शहरों से लेकर दूर दराज के गाँवों तक अपनी मजबूत पहचान बनाई। समय के साथ रेडियो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहा, समाचार, मौसम की जानकारी, खेल, शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के माध्यम से इसने करोड़ों लोगों तक उपयोगी जानकारियां पहुंचाई। प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के दौरान भी प्रसारण लोगों तक समय पर सूचना पहुँचाने का भरोसेमंद माध्यम बना। प्रसारण ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न भाषाओं, लोक संगीत, साहित्य और नाटकों को देशभर के श्रोताओं तक पहुंचाकर इसने सांस्कृतिक विविधता को मजबूत किया। आज प्रसारण का स्वरूप काफी बदल चुका है। पारंपरिक रेडियो के साथ साथ एफएम रेडियो, सैटेलाइट टेलीविजन, पॉडकास्ट, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और मोबाइल एप्स के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में अपनी पसंद के कार्यक्रम सुन और देख सकते हैं। आज भी आकाशवाणी देश के करोड़ों श्रोताओं तक समाचार, शिक्षा और जनहित से जुड़े कार्यक्रम पहुँचाती है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय मासिक कार्यक्रम मन की बात भी आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारित होता है और भारत के साथ साथ दुनिया के कई देशों में सुना जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस उन सभी प्रसारकों, पत्रकारों, निर्माताओं, टेक्नीशियनों और पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मान देने का अवसर है, जो हर दिन लोगों तक विश्वसनीय जानकारी पहुँचाने का काम करते हैं।
1: और यूरोप के कई देशों में जंगलों की आग लगातार फैल रही है। सबसे गंभीर स्थिति फ्रांस में है, जहां हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्पेन और इटली भी आग की चपेट में है। इस बीच विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन ऐसी घटनाओं को और गंभीर बना रही है। आस्था गोविंद चितवन।
0: फ्रांस में जंगलों की आग तेजी से फैलने के कारण कई इलाकों से लगभग 12,000 लोगों को सावधानी के तौर पर निकाला गया है। अब तक करीब 2,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। बोर्डो हवाई अड्डे के पास लगी आग पर काबू पाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की भी जान चली गई। उधर स्पेन में भी हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मैड्रिड के दक्षिण में टोलेडो के आसपास कई इलाकों को खाली कराया गया है। 3 से अधिक गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। वहीं इटली के सिसिली द्वीप पर आग बुझाने के लिए लगभग 6,000 दमकल कर्मी, वन अधिकारी और नागरिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसके बावजूद दर्जनों स्थानों पर आग अब भी धधक रही है। कैलाब्रिया क्षेत्र में भी 160 से अधिक आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कई आग जानबूझकर लगाई गई हो सकती है और इसकी जांच जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने यूरोप के कई हिस्सों में आने वाले दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दी है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक यूरोप में पिछले 2 दशकों के औसत की तुलना में कहीं अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुके हैं, जिससे हालात और गंभीर हो गए हैं।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स का 23वां संस्करण आज स्कॉटलैंड में ग्लासगो में शुरू हो रहा है। हर 4 साल में आयोजित होने वाले इस बड़े खेल आयोजन में इस वर्ष 74 देश हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस भी इन खेलों में भाग ले रहा है। टीम मॉरिशस में लगभग 50 सदस्य शामिल हैं, जिनमें 40 खिलाड़ी देश का चौरंगा झंडा लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि सुरों का जादू, मधुर आवाज और यादगार गीतों से सजी एक खास शाम का इंतजार अब कुछ ही दिन दूर है। और इस सिलसिले में भारत के मशहूर गायक अभिजीत भट्टाचार्य स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र के मंच पर अपने सदाबहार गीतों से श्रोताओं का दिल बहलाने के लिए तैयार हो चुके हैं। वे आज मॉरिशस पहुंचे। कैंडी मंगा, यशना मिश्रा।
2: प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है।
3: अपने कैरियर के दौरान अभिजीत ने हजारों गीत गाए। बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को अपनी आवाज उन्होंने दी है, खासकर शाहरुख खान को।
4: I pray same time and I say I promise that it will be a rocking show, historical show होगा। प्यार वो लोग देते हैं मुझे वापस करना उनका प्यार, इतना प्यार देते हैं। इट्स अ ब्लेसिंग कि हर हर आर्टिस्ट को नहीं

0: मिलता है उतना, लेकिन आई एम लकी। जरा सा झूम लू मैं, अरे ना अरे ना अरे ना, आ रहा हूँ, आ गया हूँ।
1: अपनी मधुर और गर्म जोशी भरी आवाज तथा भावनाओं से भरी गायकी के लिए प्रसिद्ध अभिजीत भट्टाचार्य आज भी अपने हर गीत के माध्यम से मन मोह लेते हैं। अपने फैंस को वे उस जमाने में पहुंचा देते हैं जब वे ये गाने गुनगुनाया करते थे।
2: बढ़ते हम मौसम के हाल की ओर याचना मिश्रा के साथ।
1: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात और कल सुबह आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद भी धूप खिली रहेगी। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिणी समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 15 से 17 और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:43 पर, शाम को सूर्यास्त 5:49 पर होगा।

0: इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। और कंसल पर हमारे साथ लुडोविक है, उनको भी धन्यवाद देते हैं। साथ रहिए, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

सुख समाचार सुनिए. रॉय रोड बालों सुरीनाम में रॉय रोड बालों सुरीनाम में 79 साल की 79 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री रामतोहल. श्रीमती सावित्री रामतोहल पैदाश्रम से आते हैं और जिन्हें साबित के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 11 बजे उनके घर बालों सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM. गजाधर स्ट्रीट स्थानीय रोजिल में इक्यानबे साल के 91 ईयर्स ओल्ड के श्री मुत्तुकपेन जिन्हें कैदर्स के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो लाशोमिया के कारखाने में काम करते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके घर स्थानीय रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सहमौत मोगोश की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो हाफ पास्ट 2 PM. ओबिलक स्ट्रीट ब्रांच रोड नोवेल फ्रांस में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री राजेंद्र प्रसाद चैतन जिन्हें राजेंद्र के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल सुबह 9:30 बजे उनके बेटे विशाल चैतन के घर नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रामजीन नोवेल फ्रांस की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM. शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है.

सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। रविवार 26 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वाकवा और आसपास के इलाकों में हॉलीवुड नंबर 1 और रूट 15 कैंटों नंबर 2, रूट दे वर्ग्यू और रूट ला मारी, रूट बैग, रूट बनफिन, शमें रिजर्वोर, डूडी लेन, शमें ला सोस, मुटू लेन और आसपास के इलाकों में भी। और शनिवार 25 जुलाई को

सुबह 8:30 से लेकर शाम के 4 बजे तक हाईलैंड्स और आसपास के इलाकों में ओवाडाली लेन, मोसलमा गामिया, PHCE मार्केटिंग और आसपास के इलाकों में भी। और शनिवार 25 जुलाई को दिन के सुबह के 8:30 से लेकर दिन के 2:30 तक सेंट क्वा और आसपास के इलाकों में रुई मारियामेन टेम्पल देबुशे, लातानिये, लाप्रेरी, कनाल बाटस्ट, हिगिनसन, अपंतर, आलेपे लावाल और उडिन लेन में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamu alaikum.
3: Kimchi Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

मॉरिशस के इस पावन कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूँ देविना आपका साथ देने के लिए। तो हम सब मिलकर प्रभु भक्ति के मधुर सागर में डुबकी लगाएंगे। आइए अपने मन को शांत करें, ईश्वर का स्मरण करें तथा उनके दिव्य नाम का रसपान करें। वैसे कहते हैं, जिस घर में प्रभु का नाम गूंजता हो वहाँ चिंता नहीं, केवल शांति तथा सुख का वास होता है। जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, यदि हमारे हृदय में विश्वास तथा प्रभु का नाम है तो हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है। चलिए पहला भजन गणेश वंदना।

श्रोताओ, प्रभु का स्मरण हमारे जीवन को नई दिशा देता है। जब मन अशांत हो, तब कोई राह दिखाई न दे, तब ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। वैसे कबीरदास जी ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होय। आइए प्रभु का स्मरण केवल कठिन समय में नहीं, बल्कि हर पल करें।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर भजले प्रभु का नाम। जीवन का सबसे बड़ा धन न धन दौलत है न प्रसिद्धि, सबसे बड़ा धन है संतोष, श्रद्धा तथा प्रभु में अटूट विश्वास। जो व्यक्ति अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसका जीवन सरल तथा आनंदमय बन जाता है। हर दिन की शुरुआत एक प्रार्थना से करें, किसी के लिए शुभकामना रखें तथा किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति है। आइए अगले भजन का आनंद लेते हैं।

जहाँ श्रोताओ, इसी सुंदर भावना के साथ आज के कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में हम अनुमति चाहेंगे। प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, भोलेनाथ तथा माता रानी की कृपा आप तथा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा समृद्धि का प्रकाश बना रहे। शुभ रात्रि, सादर प्रणाम।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औद बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमानि रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। आइए महफिल शब की इब्तिदा इस खूबसूरत कलाम से करते हैं।

है तो उसके आमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय तीन चीज़ों के, सदकाए जारिया, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ये हदीस नेक औलाद की अहमियत को बयान करती है। वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत में जो मेहनत करते हैं उनका फ़ायदा उनके इंतकाल के बाद भी उन्हें मिलता रहता है। अगर औलाद नेक बने, वालिदैन के लिए दुआ करे, उनके लिए इस्तिग़फ़ार करे और उनके अच्छे कामों को जारी रखे तो ये वालिदैन के लिए बहुत बड़ा सरमाया है। इसीलिए वालिदैन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को सिर्फ दुनियावी तालीम न दें बल्कि उन्हें नेकी, इबादत और अच्छे अखलाक की तरबियत भी दें, क्योंकि सालेह औलाद दुनिया और आखिरत दोनों में वालिदैन के लिए बाइसे राहत बनती है।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music all day, all
0: night. NBC TV, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
4: जैसे आसमान से कोई परी उतरा है।
5: विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना।
6: काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती।
5: आज से ठीक 6 महीने बाद हम मिलेंगे 14 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन प्यार करने वाले मिलते हैं।
0: रविवार 26 जुलाई को NBC 3 पर दिन के 12 बजे 1999 की मूवी मन आमिर खान और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म मन।
7: क्या ये

आपके अपन मन पसंद भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में आप सबको के स्वागत बा। हम किरण आप सबको के ई प्रोग्राम में दिल से स्वागत करत है। हमार करजोर नमस्ते स्वीकार कर। आज जुलाई महीना के चौथा बीफे है। ई महीना देखत है जाकि पाँच को बीफे बा, तो और एगो बीफे अभी बाकी बा, लेकिन ई महीना के अंत तक लगभग चल ही आ रही सा। और ई बखत 9:03 होल बा। आप रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर अपन मनपसंद प्रोग्राम सुनत हवा। और आपके ही फरमाइश पर आज के भी प्लेलिस्ट बनते जाए। ई जो पहला गीत चली आप सब कोई के नाम जुबेदा लुत्फ लेके जाए।

रात के 9:11 होलबा और आप लोग साथ देवत वजह आप लोग के फोन कॉल्स खातिर बहुत बहुत शुक्रिया। रंभा रामधौल की आवाज में अभी विश्वविख्यात गीत सुन ल जुबेदा लुतुले के जाए और अगला जो गीत चली एक फरमाइश आलबा शीला जी के ओर से आप विनोद सिद्धत के आवाज में दगा दिले रे सुनरवा ई गीत सुनने चाहत हवा और ई गीत आप अपन पति सुरेन अपन सब लयका सब परिवार के नाम करत हवा। तो चला आपके मनपसंद गीत और ई गीत के और ये आवाज़ के ढेर शौकीन भी हमने संगे अभी जुड़ल हवन जा तो जितना कोई भी विनोद सिद्धत के फैन हवा जा आप सब कोई के नाम ई अगला गीत

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सेंटर

0: आज बीफे के 23 तारीख है, 23 जुलाई 23 जुलाई 2024। और बीफे के जब दिन आवेला, खास तौर पर जब शादी ब्याह के मौसम चलेला, तो ऐसन में घर परिवार, घर आंगन और गाँव, पूरा गांव में से कब्जा बोले बहुत ही सुंदर माहौल बंध जाला। तो जहाँ भी आजकल विवाह की तैयारी होता, शादी ब्याह के जो इंतज़ाम बा वो होता, बहुत ही खुशनुमा माहौल में आप सब कोई के बहुत बहुत शुभकामना। ऐसन ही एगो फरमाइश आलबा बोबासे मोगोश से, हुआ के बलिवन परिवार में एगो शादी हुई होला बा इस सप्ताहांत के, और बहुत ही चहल पहल शुरू हो गल बा। जैसे जानेला मॉरिशस में एक सप्ताह अक्ते से ही जब शादी होवेला तब घर में बहुत सुंदर वातावरण छा जाला, और आस पड़ोस के सब कोई मदद करेला जा, जितना परिवार हवन जा उलो के आवाजाही शुरू हो जाला। तो बलियोन परिवार के घरे हर्षिनी के शादी हुई होला बा ओविन के साथ। हर्षिनी और ओविन के पूरा परिवार, पूरा बलिवन फैमिली के ओर से बहुत बहुत शुभकामना। उनकर माँ जिजिया, पापा राज, भाई अश्विन, मामू ऋषि और मामी सोनिया के साथ साथ पूरा परिवार, पूरा सगे संबंधी, सब दोस्त, सब पड़ोसी, सब आस पड़ोस के सगे संबंधी, सबके ओर से आपके शादी के बहुत बहुत सालगिरह, हर्षिनी और ओविन के बहुत बहुत बधाई। और आप लोग के साथ साथ जितना कोई भी शादी के बंधन में बंधे जाता वजह इस सप्ताहांत या फिर आज या कल, आप सब कोई के भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के ओर से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामना।
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे।

0: संगे एमबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया।
2: तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है।
3: नमस्ते अंकल जी।
2: तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई।
4: जीने के है चार दिन।
0: रविवार 26 जुलाई को एमबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मुझसे शादी करोगे 2004 की ये मूवी सलमान खान और अक्षय कुमार साथ नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा कॉमेडी से भरपूर मूवी मुझसे शादी करोगे।

अभी थोड़ा घड़ी आगे आप सुन ल पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में पिया परदेस, और पिया परदेस के फरमाइश बहुत आवेला, अक्सर आवेला, और ये खुद पूर्णिमा फोकिरा जी के मनपसंद गीत है। तो आशा

करे थे जाके एक आनंद आप खूब उठेला। और अभी चलता ज्ञान मोहिपतलाल के आवाज़ में ए बबुआ तू ना रो, एकर फरमाइश आत्माराम जी के ओर से और ख़ास तौर पर बॉशेरी के धनी जी के नाम। अब एकर बाद एगो सालगिरह गीत चली। सालगिरह हर रोज़ कोई ना कोई ज़रूर मनावेला। आज 23 तारीख के 23 जुलाई के जिकर भी जन्मदिन बा भोजपुरी तरका में आप सब कोई के ढेरों शुभकामना, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और ऐसने ही एगो शुभकामना आलबा हैप्पी बर्थडे गीत बसंत सुपोल के आवाज़ में ये गीत के फरमाइश करत हवन हांसले और मारिलिन। हांसले और मारिलिन अपन भतीजी और अपन कुजिन आना के नाम करत हवन जा अगला गीत जे लोग जे रेन्यून आइलैंड से हवन। त हांसले और मारिलिन के ओर से उनकर भतीजी और उनकर कुजिन के नाम हैप्पी बर्थडे गीत। और उनकर संगे संगे जितना कोई भी आज काल या अभी से लेके लेंदी के हमने के मुलाकात हुई जेकर भी जन्मदिन ई अंतराल में रही हमने की ओर से बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत प्यार और ढेरों आशीर्वाद।

0: का किरण संगे एमबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियां
1: ले रही थी। जीना तो मैंने अब से शुरू किया है, मुझे बहुत डर लग रहा है।
2: सपना मेरी होने वाली पत्नी है,
1: मैं जा रही हूँ।
2: तुम मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं जाओगी सपना।
0: शनिवार 25 जुलाई को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे। 2002 की ये मूवी ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल पर फिल्म आई गई आप मुझे अच्छे लगने लगे।
3: मुझे अच्छे लगने लगे।
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
4: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
5: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
6: Your kind of music, all day, all night, right here on your

ई बखत रात के 9:45 होलबा, मतलब कि 10 बजे में अभी और 15 मिनट बाकी बा। और हमनी के साथ रही, जैसे जानेला हमेशा की तरह, रात के 11 बजे तक। और 1 घंटा और 15 मिनट बा हमने संगे। आप लोग के प्यार खातिर, आप लोग के साथ खातिर बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके फ़ोन कॉल्स खातिर ख़ास तौर पर धन्यवाद। अगला जनगीत चली, आप सब कोई के मनपसंद गीत है, सोना नोयन के आवाज़ में, उनकर स्वर्णिम आवाज़ में, जे भोजपुरी दुनिया में शुरू से तहलका मचेले हवन, ललका चिड़ैया।

दादा के पसल पसल ललका चिड़ैया उड़ल जाला, उड़ के कहाँ जाला, छोड़ के मोरिसवा आज का कोई कहाँ सके जाए। छोड़ के जे भी मोरिस गल बा तो रात दिन अपन देश के उ लोग के याद आल बा। तो चला ये गीत के फरमाइश आल बा हमनी के छोड़ के मोरिसवा। ये गीत सुने चाहत हवन भाई अब्बू। भाई अब्बू हमेशा की तरह ये गीत अपन पूरा परिवार के नाम करत हवन और ख़ास तौर पर उनकर भतीजी हवन रकीबा जिनकर तबीयत नासाज चलता। उनकर स्वास्थ्य समस्या अभी ठीक नहीं होल बा, लेकिन भाई अब्बू उनकर खातिर दुआ करत हवन रात दिन हर रोज़ और हमने के हर प्रोग्राम में उनकर याद करत हवन। और रकीबा के मामू बोलत हवन कि उनकरा उ भरपूर दुआ देवत हवन कि अल्लाह उनकरा शिफा दियन। और साथ में आप अबू अफेज़ अयाज जयर जहीरा रईस कालाचोटी आपी और उनकर पत्नी के नाम भी ये अगला गीत करत हवा। आतिश भगीरथी के आवाज़ में छोर के मोरिसवा आप सब कोई के नाम जे लोग खुशी रहला जा ये गीत सुने के। ये गीत के फरमाइश हर प्रोग्राम में करेला जा।

0: एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: तूने तो कहा था कि शनि पिछले हफ्ते चला गया।
2: तुम्हारी कुंडली में अभी अभी कुछ ही क्षणों में प्रकट होने वाला है।
3: नमस्ते अंकल जी।
2: तुम्हारी लव स्टोरी इस खिड़की से शुरू हुई और कर्नल के कान पे जाके खत्म हो गई।
4: जीने के है चार दिन।
0: रविवार 26 जुलाई को एनबीसी 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म मुझसे शादी करोगे 2004 की ये मूवी सलमान खान और अक्षय कुमार साथ नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा कॉमेडी से भरपूर मूवी मुझसे शादी करोगे। किरण संगे जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
5: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
6: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो।
7: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
8: रात के 10 बजे में खाली 2 मिनट रह गया बा और

फिर पूरा एक घंटा तक हमनी के साथ रही। अगला जो गीत चली आदेश ठाकुर के आवाज में, आदेश ठाकुर प्रसाद के आवाज में ये गीत सुने चाहता वन। क्लावेट से विजय बंधन, और विजय बंधन जी अपन पत्नी रेखा के नाम, अपन सब दोस्त के नाम और हमर नाम भी ये अगला गीत करत हवन। और गीत के शीर्षक है हमरा छोकरी मिलल। तो चला सुनी जा, जब छोकरी मिलल तो आगे कहानी कैसे बढ़ल।

चमेली चमेली ईगीत के फरमाइश करले हवन वाकवा से सुदेवी जी। और सुदेवी ईगीत खास तौर पर अपन दीदी ललिता और कुशल परिवार के नाम करत हवन, साथ में आत्माराम भैया और सुनीता शोभा देवीना, मालेगा के पूरा रमरतन परिवार के नाम और जितना कोई ई बखत हमने के सुनत हवा जा, आप सब कोई के नाम वाकवा के सुदेवी के ओर से।

बाहर गौरी के आवाज में मामा और पापा और अगवा के बाद अगला जो गीत चली वो किशोर किमिया की आवाज में बहुत ही जोशीला गीत जिंदगी तू जमाल कुडू आप सब कोई के नाम।

0: एनबीसी टीवी रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: ऐसा लगता है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई।
2: विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना।
1: काश तुम कभी तो मेरा विश्वास करती।
2: आज से ठीक 6 महीने बाद हम मिलेंगे 14 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन प्यार करने वाले मिलते हैं।
3: चाहा है तुझको चाहूंगा हर दम।
0: रविवार 26 जुलाई को NBC 3 पर दिन के 12 बजे 1999 की मूवी मन आमिर खान और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म मन। क्या ये?

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only
4: रात के 10:22 होल बा और 11 बजे तक आपके ई प्रोग्राम चले होला बा। कुणाल हिरीलाल के आवाज़ में थोड़ा घड़ी आगे एगो गीत सुनला, निशा निशा लगेला और एकर बाद जो नगला गीत चली वो फ्रीमान लुई लागा के आवाज़ में लाली लाली कान प्लांते। ये गीत जितना कोई भी फ्रीमान लागा के शौकीन उनकर फन हवा जा आप सब कोई के नाम, खास तौर पर ये गीत बुआशेरी के धनी जी के नाम।

श्रीमान लगा के ये गीत के बाद जो अगला गीत चली सरिता बुधु के एल्बम से ननद मोरे सोने की चिड़ैया, ये गीत के फरमाइश करा था वन फ्लिक ऑफ फ्लक से अनिता जी। और अनिता जी जितना कोई अभी रेडियो के साथ

अगला गीत स्वीटी की आवाज में, और ये गीत के मांग करता वन पितों से अमृता गणेश। अमृता गणेश अपन बेटा विशांत और बेटी, बेटा और बहू मीनाक्षी और विशांत, और साथ में अपन दुगो पोती सोनिया और परी के नाम ये अगला गीत करा था वन। पूछता अपन पोती लोग खातिर ये गीत गावत गवावत हवा त पितों से अमृता गणेश जी, आपके और आपके पूरा परिवार के नाम ये अगला गीत।

0: भोजपुरी तड़का किरण संगे
1: सेंटर 95.5 नॉर्थ साउथ 95.6 ईस्ट वेस्ट 98.2
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो मनोरंजन रेडियो
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.
4: पियर पियर ऊठी के हरियर नगिनवा दिव्या रघु के आवाज में ये गीत खास तौर पर घोंगोप के सुनीता जी के ओर से उनकर बहन विमाला के नाम जे कोंगोमा से सुनत हवन और साथ में रोजिल के साजिद जी के नाम और साजिद जी के ओर से उनकर दोस्त सरोवर के नाम जे कनाडा में हवन

दिव्या रघु के ये सुंदर आवाज होला गीत के बाद जो नगला गीत चली वो इतने ही मधुर आवाज बा, लेकिन अब की बार एगो पुरुष के आवाज बा, आशीष रामफल की बात करत है। और सुहाना सफर बा, रंगीन रात बा, अच्छा मौसम बा, ठंडा ठंडा हवा चलता, ऐसन में ऐसन ही एगो रोमांचक आवाज के जरूरत बा। सफर पर हुई बा, घर पर आराम करत हुई बा, या सुते से आगे रेडियो के साथ जुड़ल हुई बा, ताकि अच्छा नींद आए, तो ये गीत आप खातिर सबसे बेहतरीन गीत। और अभी और 15 मिनट तक प्रोग्राम चली, हमके आज्ञा दा, हमने के मुलाकात काल फजर के हुई हमारी धरोहर में, और नहीं तो फिर से भेट आप जा भोजपुरी तरका प्रोग्राम में आवत लेंदी के। आप सब कोई के आपके ध्यान खातिर, आपके वक्त खातिर, आपके साथ खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। शुभरात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स, मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त यानी कि गिनीशा, लेकर आ गई हूँ यादों से भरा एक खूबसूरत सफर सुनहरे पल में। हम साथ मिलकर सुनेंगे वो पुराने बॉलीवुड गीत जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की कहानियां हैं। तो बस आप आराम से बैठ जाइए और तैयार हो जाइए, दिल के दरवाजे खोल दीजिए और चलिए लौट चलते हैं उन हसीन लम्हों की तरफ सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: कभी कभी एक पुराना गाना सुनते ही पूरी जिंदगी आंखों के सामने आ जाती है। बचपन की वो यादें, पहला प्यार, दोस्तों के साथ बिताए हुए पल। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं लम्हों को फिर से महसूस करेंगे, तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि आने वाले हैं हर गीत के साथ जुड़ी है एक प्यारी सी कहानी जो खासकर आप लोगों के लिए हम डेडिकेट करना चाहेंगे।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: रेडियो मॉरिशस के प्यारे श्रोताओं, अगर आपको लगता है कि पुराने गीतों का जादू आज भी दिल को छू लेता है तो ये महफिल सिर्फ आपके लिए है। सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो अमर गीत, वो अमर नगमे जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गया है। बिल्कुल, आइए मिलकर संगीत भरी शाम को यादगार बनाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज के इस सफर में ऐसे ऐसे गीत हम पेश कर रहे हैं जो हमारे दिल के बहुत ही ज्यादा करीब हैं। वो गीत जो हर खुशी में साथ रहे, हर गम में सहारा बने। सुनहरे पल में आपका हार्दिक स्वागत तो हमने कर लिया है, लेकिन अगला गाना जो हम पेश करने वाला है ना, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और वो भी दिल से। हम आपका साथ देंगे रात के 12 बजे तक। सिर्फ यादों और संगीत की दुनिया में खो जाइए हमारे साथ।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: हर गीत एक एहसास है, हर धुन हमेशा एक कहानी सुनाती है, और हर सुर में छुपा है एक अनमोल लम्हा। सुनहरे पल में आज हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के बेहतरीन गीत, जो आपके दिल को सुकून देंगे और चेहरे पर मुस्कान ले आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। मैं हूं निशा, जो बड़े शिद्दत से आपका साथ दे रहे हैं।

वैसे देखा जाए जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ हमें सुकून देता है ना, तो वो होते हैं संगीत। और जब बात हो पुराने बॉलीवुड गीतों की, तो दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। तो चलिए आज मिलकर उन्हीं मधुर गीतों के साथ यादों के सफर पर निकलते हैं सुनहरे पल में।

खूबसूरत गाने तराने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए सुनाते सुनाते। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुड बाय टू यू। बिल्कुल जी, आप हमें इजाजत दीजिए ताकि दोबारा फिर से लौट के आप आए आपके लिए एक और खूबसूरत सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर और अपना ख्याल रखना जी।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

Damn, done. I didn't.